सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 24, तदनुसार अगस्त 15 ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज के प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: super hypnotic. राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित

0: किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
0: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रकृत्यात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषाद राज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन

संरक्षण की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचान कर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार थे ए हरिहरन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

इस भक्ति संगीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे आनंद मोहन पाठक के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। सुबह के 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। सुबह के 8:15 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का आकाशवाणी दिल्ली से। सुबह के 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची।

सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। सुबह 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम बेविधा। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 2:55 पर आकाशवाणी रांची से। 3 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। शाम के 5:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। बांग्ला कार्यक्रम सात रंग आप सुनेंगे शाम के 6:02 पर। आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 6:30 पर। शाम के 6:45 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:56 का समय होगा जिले में आजकल आकाशवाणी रांची से। शाम के 7 आप सुनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य के जनता के नाम संदेश, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी रांची से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा भारत का स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद आप सुनेंगे होलो गीत अमरनाथ सामड़ और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंटवार्ता, दसर कीट पालन कैसे करें। भेंटवार्ताकार होंगे कोलाईवारी, उनसे बातें करेंगे डोबरो बुरूली। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे संथाली लोकगीत सुराई मुर्मू और साथी को। रात्रि के 8 सुनेंगे इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 8:15 का समय होगा राज्य स्तरीय समन्वित रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी रांची से। रात्रि के 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9। रात्रि 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 आप सुनेंगे पश्चिम सिंहभूम के चायबासा में विभिन्न संस्थानों द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर ध्वजारोहण पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी चायबासा से। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत आनंद मोहन पाठक के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत आनंद मोहन पाठक के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: आइए लाल किला चलें। वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र, अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
1: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की इस सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कॉमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें

सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

0: दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्के हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में सजे धजे, गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकॉक के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ, केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
0: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो

0: उत्सुकता से एक तक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है। अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहाँ आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहाँ पर सामान्य जन हैं। एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो 3 प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं। दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कारक का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है मां भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा

सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम मां भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गर्द का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन बिक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में। कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान गर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कारपेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का अभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी, भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत

0: ही भारत की विचारधारा और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
0: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले, जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी, तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था, तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले

0: योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी, उसमें मास्टर रमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी, जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठकें की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है, इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहां चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इस समय ध्वज

और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर, ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलियां करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए। बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं, वहां ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: जी, और जनेंद्र, किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये।
0: जी, और राष्ट्रीय सलामी कारत अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहां से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर, जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहां उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और

0: सज्जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें

सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देश

साथियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा,

हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया, बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था।

एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है, और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार

2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्य वेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक सिक्योर

और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के

0: हमें नई धारा चाहिए।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेनर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्त धारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मंडवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्त धारा की

चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा, शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा, मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है, योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का, हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का

आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सात शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश जाने सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा, और इसको अगर हम गढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों

लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर, और देश के नौजवानों ने को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1,000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2,50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है, देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 9-10 का कालखंड था, सिर्फ 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों,

ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य

हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विशाल रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100

देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सानंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए, और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़ हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है।

और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स

0: जाती है क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में, और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें, और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें, तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है, 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का, बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री

0: जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूँ, मैं युवा हूँ, मैं भारत का प्राण हूँ।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है। और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली, जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो

0: स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का, जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है। 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में, 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है, इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान।

0: भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आपको। आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: लगता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा

0: सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा। हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड एरिया घोषित किया जाएगा।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा

0: हमें अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपए पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपए में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपए में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा

0: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत, जबकि लोकसत्ता ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
0: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।

0: राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने दलित हो पीड़ित हो वंचित हो आदिवासी हो गांव में रहने वाला हो शहर में रहने वाला हो युवा हो बुजुर्ग हो नारी हो पुरुष हो हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को पार करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
0: He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.

0: ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
1: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold.
0: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: Ab energy ke bina bhi nayi duniya ko chalana mushkil hai aur isliye hame cheap ho AI ho डेटा सेंटर हो हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said

0: with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of two-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और
2: अभी आप सुन रहे
3: जन जन तक पहुंचे पैगाम डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
4: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
5: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हुआ सामूहिक गायन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाना हमारा संकल्प। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया ध्वजारोहण। झारखंड के 9 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, आईजी शैलेंद्र सिन्हा को विशिष्ट सेवा सम्मान। और मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया गया। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की गई। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, देश उत्साह और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता है जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया।
7: देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वतंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
6: इस वर्ष लाल किले पर

0: स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीर बलिदानियों की शहादत को नमन किया। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने तिरंगा फहराया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दुमका स्थित लोक भवन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने हिजला ग्राम स्थित राजकीय मुकबधिर आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मुकबधिर बच्चों के बीच पुरस्कार वितरित किए और चॉकलेट व मिठाइयां बांटकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को आजाद हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन देश में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
2: आज आवश्यकता है कि जो भी समाज के लोग अगर यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ जरूर आएं और बच्चों के साथ समय बिताने का काम जरूर करें। उनको ये महसूस कराएं कि सब हमारे हिस्से के हैं। अब कोई कमी रह गई है कोई गलत बात है, पर उनको महसूस कराएं कि वो प्रगति तरक्की करके आगे बढ़ सकते हैं और पहचान बना सकते हैं।
0: स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर झारखंड पुलिस के 9 अफसर जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें झारखंड के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा PSM के लिए चुना गया है। वहीं 8 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक MSM प्रदान किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। स्वतंत्रता दिवस पर आज आंदोलनरत छात्र रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इससे पहले JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की ओर से कल सरकार में शामिल मंत्रियों और JSSC के अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से अब तक ठोस पहल नहीं किए गए हैं।
3: अभी स्टूडेंट हम लोग खड़ा नहीं हुए ना तो फ्लिपकार्ट और अमेजन में झारखंड का नौकरी पीछे। मेरा नाम कृष्णा है। 15 अगस्त है, झंडा मार्च करेंगे स्टेडियम से लेकर लालपुर, लालपुर से फिर यहाँ अल्बर्ट एक्का चौका, यहाँ से फिर वापस हम लोग स्टेडियम जाएंगे। फ्लैग मार्च होगा, समय सुबह है सर 9 बजे।
0: जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत सुदूर

0: मत किए गए। झारखंड में अगले चार दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं गढ़वा पलामू क्षेत्र में अतिवृष्टि को लेकर चेतावनी दी गई। रांची में 28 से 30 अगस्त 2026 तक 18वीं झारखंड स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने स्वतंत्रता दिवस की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। दैनिक जागरण के शब्द हैं, राज्यपाल दुमका में और मुख्यमंत्री रांची में करेंगे ध्वजारोहण। दैनिक भास्कर के सुर्खी है, SIR मतदाता सूची पर दावा आपत्ति की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी। हिंदुस्तान ने लिखा है, नीट पेपर लीक, CBI को आगे की जाँच के लिए मिली मंजूरी। प्रभात खबर लिखता है, 78 वीरता पुरस्कारों का ऐलान, 13 को मरणोपरांत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हुआ सामूहिक गायन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित, कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया ध्वजारोहण। झारखंड के 9 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, IG शैलेंद्र सिन्हा को विशिष्ट सेवा सम्मान। और मौसम विभाग ने आज से अगले चार दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का ये गीत, सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और विजय प्रकाश के आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म फना का ये गीत महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: हम जब योग और प्राणायाम करते हैं ना, तो हम शरीर, श्वास और मन के ऊपर काम करते हैं। हमारा मन बहुत रिलैक्स होता है।
1: अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिसे वो लाभान्वित हो और अपने रोज की जिंदगी में योग को शामिल कर सके?
0: देखिए, मेरा संदेश है कि योग के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। रोज केवल 10 से 15 मिनट निकालें खुद के
1: जी
0: लिए और योग करें। खासकर महिलाओं को समय नहीं मिलता, तो महिलाएं अपने दिनचर्या में 5 से 10 मिनट निकालें खुद के लिए, है ना? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है खुद को स्वस्थ रखना। जैसे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी उठाती है, आपको भी अपने शरीर के लिए जिम्मेदारी है कि आप उसे स्वस्थ रखें। तो सब लोग अपने दिनचर्या में 5 से 10 मिनट योग को शामिल करें और डेली इसका अभ्यास करें। शुरुआती दौर पे थोड़े समय के लिए आप शुरू करें, फिर धीरे धीरे आप योग को अपने जीवन में थोड़ा समय को बढ़ाएं और डेली इसका अभ्यास करना चाहिए। देखिए, महिलाएं सुंदर दिखना चाहती हैं,
1: जी
0: ठीक है? आज के दौर में सलून जाते हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर जाते हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखूं।
1: जी
0: लेकिन जब वो योग करते हैं ना, तो अंदर से निखार आता है खिल करके, है ना? और वो जो ब्यूटी होती है, वो जो सुंदरता होती है ना, वो पूरे समय। तो योग हमें करनी चाहिए, बहुत सारे फायदे हैं।
1: मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आइए, हमारे श्रोताओं को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताइए और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं वो आपकी बातों से काफ़ी प्रभावित होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मित्रों, योग विशेषज्ञ श्रीमती नीतू जी से बातचीत के माध्यम से आज हमें यह समझने का अवसर मिला कि योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का एक उपयोगी पद्धति है। श्रोताओं, उम्मीद है कि यह भेदवार्ता आप सबों को व्यस्त दिनचर्या में योग के लिए थोड़ा समय निकालने के लिए प्रेरित करेंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिकी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। सूत्रधार थे युवराज और कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम जोहार रांची लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सभी देशभक्तों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
1: और पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आज इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आज स्वतंत्रता दिवस की, जो कि हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ सुनीता
0: और मैं रेणु। सभी को जोहार,
1: नमस्कार। और रेणु जी, कैसा लग रहा है आज बाहर से जब आप आ रही होंगी?
0: गजब नज़ारा है, एकदम खुद को प्रफुल्लित महसूस हो रहा है। इस प्रांगण में घुसते ही सभी हमारे जो कलीग हैं, हाँ, सबका देख के लग रहा है कि आज तो कुछ विशेष है, स्पेशल है। मतलब सबके पहनावे, ये लहराता हुआ झंडा
1: बिल्कुल
0: हमारी शान को बढ़ा रहा है।
1: और जब भी हम अपने झंडे को देखते हैं ना फहरते हुए, हमारे गूज़बम्प्स आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा झंडा है जिसके नीचे हम आज़ादी की सांस लेते हैं और ये हमारा प्राउड है, हमारा अभिमान है।
0: सच में सुनीता, आजादी केवल एक अधिकार नहीं बल्कि करोड़ों बलिदानों की अमूल्य धरोहर है।
1: हाँ, और कितने बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली है और आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। और हम नमन करते हैं अपने

0: सभी वीर शहीदों को जिनकी वजह से आज हम इस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं।
1: सच में न तन से प्यार है न धन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है।
0: वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी बात मैं भी कह दूं, हम सबका मान है तिरंगा, भारत की शान है तिरंगा, भारत की जान है तिरंगा।
1: बस बहुत अच्छा ये है भाई। सच में आज वो दिन आया है ना सुनीता, जब दिल को मगन कर लेते हैं, हर शहीद को नमन कर लेते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और अनेकता में एकता, इस देश
0: पहचान है, इस देश की पहचान है,
1: इसलिए तो मेरा भारत
0: महान है।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: और जोहर रांची कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे थे आज के दिन की, तो आज जो दिन है ना, बेहद खुशनुमा है। चारों ओर तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है, हर घर तिरंगे से सजा पड़ा है। और बात कर ले आज के दिन की, यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन उन असंख्य वीरों के त्याग, साहस और संघर्ष को स्मरण करने का दिन है, जिनके बलिदान से भारत ने पराधीनता की बेड़ियां तोड़ी। स्वतंत्रता का यह पर्व हमें उस गौरवशाली यात्रा की याद दिलाता है,
6: जिसमें अनगिनत देशभक्तों ने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए न्योछावर कर दिया। 15 अगस्त हमारे लिए स्वाभिमान, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल अधिकार नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। देश की स्वतंत्रता को अक्षुण रखना, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
5: बिल्कुल, और इसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमें खुशी है कि आज हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ प्रकृति, त्योहार, सब कुछ इतने अच्छे प्यार से मनाए जाते हैं कि अपने आप में हमारी जो संस्कृति है ना रेणु जी, बिल्कुल अनूठी है। और किसी भी क्षेत्र में हो, हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो हम भी अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सा देशभक्ति गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: तो रेणु जी, बातें कर रहे हैं हम वीर शहीदों की, तो हम अपने राज्य झारखंड के अमर नायकों को कैसे भूल सकते हैं?
3: बिल्कुल सही में सुनीता, ये संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में झारखंड के आदिवासी नायकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास से बड़े राजनीतिक नेताओं, राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा नगरों में हुए आंदोलनों का इतिहास नहीं है, ये भारत के सुदूरवर्ती गांवों, जंगलों, पहाड़ों और जल जंगल जमीन से जुड़े आदिवासियों का संघर्ष का भी
2: कौन
3: इतिहास
2: भूल सकता है। संथाल विद्रोह, बिरसा भगवान बिरसा मुंडा की वो उलगुलान हुनका, तिलका मांझी का पहाड़िया और तमाड़ विद्रोह, साथ ही सिद्धू कानू, फूलो झानू, एक कितने ही वीरांगनाएं या वीर हमारे झारखंड के रहे जिन्होंने अपना योगदान दिया है, तो उन्हें भी नमन करते हैं हम।
3: बिल्कुल, और आज सच में सुनीता, ये जो पराधीनता के श्राप से 2 वर्षों के बाद लंबे तक रक्तरंजित संघर्ष के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल हुई ना, इसके पीछे कई नायकों का, जैसे तुमने नाम लिया, कई नायकों का,
2: देखो हमारे जो नायक है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, न जाने कितने भी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी रानी, मतलब कितने जो
3: भारत में अनेकों होनहार ऐसे वीर सपूत लिए जिनके संघर्ष के बदौलत हम आज
2: आजाद हैं
3: और ये पर्व राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं।
2: बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ना, जो हम अपने इन वीर जो हैं शहीद हैं, अमर शहीद हैं, उन्हें हमेशा याद रखें, और हमारी श्रद्धांजलि तभी सच्ची होगी जब हम हमारे आने वाली पीढ़ियां इन पर गर्व करेंगे।
3: बिल्कुल।

0: सच तो है रेनू जी, हम रहे ना रहे भारत रहना चाहिए। भारत हमारी शान, हमारा अभिमान, इस बात से तो शायद ही किसी को परहेज होगा।
1: बिल्कुल।
0: और जब हम बात करते हैं भारत की, तो हमारे राष्ट्रीय गीत को हम कैसे भूल सकते हैं जब हम इसके 150वां वर्ष के में प्रवेश कर चुके हैं।
1: हाँ।
0: वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1875 में लिखा था। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया।
1: और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये गीत देशवासियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना। इतिहास और इसका जो गीत है, जो सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को बंगा दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था
0: और पहली बार इसे गाया गया था सन 1896 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था।
1: हाँ। और राष्ट्रीय सम्मान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर राष्ट्रीय गीत की दर्जा दिलाया।
0: स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका नारे के रूप में बंगाल विभाजन के समय 1950 में यह एक शक्तिशाली नारा बन गया। साथ ही इस गीत को गाते हुए अनेक देशभक्तों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया।
1: और
0: यह गीत जो है ना, एकता का प्रतीक है। इसने जाति और धर्म से ऊपर उठकर पूरे देश को मातृभूमि के प्रति प्रेम के सूत्र में पिरोया है। और आपने देखा होगा, अब इससे लेकर कानून भी बन गया है, जितना हम सम्मान राष्ट्रगान को देते हैं, अब इस गीत को भी उतना ही सम्मान, उतनी ही तरजीह हमें देनी होगी। और अब हर जगह ये गाया जाएगा,
1: हर घर तिरंगा अभियान हर अवसर पर
0: इसे गाया जाएगा। तो फिलहाल अभी हम तिरंगा की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम अपने मातृभूमि प्रेम को दर्शाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: रेनू जी एक बात बताइए, आज आजादी हम सब मना रहे हैं, झंडा भी फहरा चुके हैं, हम लोग अपने आकाशवाणी के परिसर में भी सब मिलकर झंडा रोहन किए हैं।
1: हाँ?
0: आप अपने घर में झंडा लगाएं, तिरंगा लगाएं या नहीं लगाएं?
1: नेकी और पूछ पूछ, आज तो हर घर में तिरंगा है, हमारे छत पर भी ऊपर में तिरंगा लहरा रहा है, सभी लोग बच्चे खासकर उत्साहित है और घर के छत पर जाके सुबह सुबह झंडा फहराए।
0: अच्छा, अब मैंने क्या किया बताओ, मेरे को सुबह यहाँ आना था ट्रांसमिशन के लिए, मैंने कल दिन में ही अपने घर में बालकनी में बढ़िया तिरंगा लगाया, सल्यूट किया, मतलब अब सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा, तो आज ही उनको कल ही जय हिंद बोल के इधर सुबह अपने श्रोताओं से मिलने आ गई। तो हर घर जो तिरंगा अभियान है ना, इसका पता है मुख्य महत्व क्या है? नागरिकों के मन में देशभक्ति जगाना, राष्ट्रीय ध्वज के साथ व्यक्तिगत

0: जान दी। और ये झंडा जो है ना, हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इस पर कोई भी आंच हमारे जीते जी तो नहीं आनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: झंडा हमारा मान, अभिमान और हमारी शान है।
1: सच में सबको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
0: और हिस्सा ले रहे हैं, पूरे राज्य पूरे देश में धूम मची हुई है, हर घर
1: हाँ
0: तिरंगा, इधर
1: बिल्कुल,
0: देखो
1: उधर
0: तिरंगा।
1: तिरंगा।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे जोहार रांची कार्यक्रम रेणु और सुनीता के साथ। और हम बातें कर रहे हैं आज, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, स्वाधीनता का दिवस है, तो देशभक्ति की बातें हो रहे हैं। लेकिन रेणु जी, एक बात बताइए, हाँ। क्या देशभक्ति केवल सरहद पर जान देने जैसा है क्या?
1: नहीं भाई, देशभक्ति केवल सरहद पर जान देने जैसा नहीं है, बल्कि देश के प्रति अपनी ईमानदारी, अच्छे कर्म और कर्तव्यों को निभाना है।
0: बिल्कुल, और इससे देश में की संस्कृति का सम्मान करना, एकता बनाए रखना, समाज की भलाई के लिए भी काम करना शामिल है।
1: सच में अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना ही देशभक्ति का मुख्य रूप होना चाहिए।
0: सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करना भी जरूरी है। देश के जो नियम कानून है उनका पालन करना भी देशभक्ति है।
1: और देश को साफ सुथरा रखना और पेड़ लगाना भी हमारी जिम्मेदारी है, सब नागरिकों की जिम्मेदारी है, देश के लोगों की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल, और पेड़ लगाने की बात है तो पेड़ लगाओ अभियान चलता ही है। एक पेड़ माँ के नाम भी हम हमेशा लगाते आ रहे हैं। और जब बात चली है पर्यावरण की, प्रकृति की, तो अभी पता है सावन का महीना चल रहा है।
1: हाँ, और आज है ना सुनीता, स्वाधीनता दिवस तो है ही, और हरियाली तीज भी है।
0: अरे वाह,
1: उसकी भी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, शुभकामनाएं। और जो ये है ना हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस, दोनों ही हमें आपस में जोड़ते हैं,
1: और दुर्लभ संयोग है ये।
0: हाँ,
1: कि दोनों।
0: और देखिए ना, हमारे झंडे में भी एक रंग हरा है ना।
1: हाँ,
0: हमारी धरती को हरा भरा दर्शाता है, प्रकृति का रंग है। तो अपनी प्रकृति को अगर हम साफ सुथरा, स्वच्छ रखें और उसको इतना संतुलित रखें कि आने वाली पीढ़ियों को कभी कोई परेशानी ना हो।
1: और ये जो है ना तीज और स्वतंत्रता दिवस का दुर्लभ जो संयोग है ना, तीज का झूला है ना, बंधी रस्सियों के बीच भी मुक्त उड़ान देता है। इसी में स्वतंत्रता का सुंदर संदेश भी है।
0: और रस्सियों में बंधा जो झूला होता है ना, वो आसमान छूने की भी आजादी देता है।
1: अधिकारों को जिम्मेदारियों का संतुलन मिले तो उड़ान और ऊंची होती है।
0: बिल्कुल, और हरियाली बिना वृक्षों, बेल, फूल के नहीं हो सकती। इस पर्व का सबसे बड़ा सबक प्रकृति का संरक्षण और उसकी प्रसन्नता है।
1: सच में, महल से निकल कर बाहर जाए, सबके बीच आती है जो है पीपल्स पर्सन जो होते हैं, मेला जोड़ती है, संदेश है कंफर्ट जोन से निकले और मिलजुल कर रहे।

0: मतलब घर में बंद करिए, नहीं कि आजादी आप है आज छुट्टी का दिन है घर में बंद रहो,
1: नहीं बिल्कुल नहीं। और आजादी जो है ना वो सच में आपने देखा होगा रोज वही सूरज उगता है, रोज वही दिन होता है, रोज वही शाम होती है, लेकिन आज का जो दिन है ना अलग ही अनुभूति देता है। आप सुबह ही सोकर उठते हो तो लगता है अच्छा आज ही तो हम आजाद हुए थे, ये बात हर साल हमें हमारे दिमाग में आती है। और जब हम तिरंगे को देखते हैं, उसके रंगों को देखते हैं, तो उसके तीन रंग हमें बहुत सारे संदेश देते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं,
0: एकदम अंतस को छू जाती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत माहौल चल रहा है, और हमारे यहाँ स्टूडियो में भी हम लोग तिरंगे रंग में रंगे हुए हैं। आप देख तो नहीं पा सकते हैं लेकिन सब कुछ वैसा ही है।
0: बातों से ही पता चल रहा है कि हम लोगों में भी कितना मतलब जुनून है, देशभक्ति का उत्साह भरा हुआ है।
1: बिल्कुल, तो चलिए इस उत्साह को आगे बढ़ाते हैं और ये गीत सुनते हैं।

0: सचे है रेनू जी, रंग दे बसंती, ये जो कलर है ना, ट्राई कलर जिसे तिरंगा हम कहते हैं,
1: हाँ।
0: बहुत मुश्किल से हमें मिला है, बहुत कठिनाइयों के बाद मिला है, और न जाने कितने लोगों की शहादतें हुई, कितने लोगों का प्रयास रहा, जिसके बाद हम आज आजादी की हवा में सांस लेते हैं।
1: सच में गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा, आजादी के दिन आओ मिलके करे दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। जैसा बात कर रही थी ना तिरंगे की, तो एक लगा कि हमें भी कुछ याद आ रहा था, तो बोल दे।
0: बहुत सही, बहुत खूबसूरत लाइनें आपने कही हैं, और बात तिरंगे की हो रही है ना, तो तिरंगे का सम्मान हम सभी को करना चाहिए। तिरंगा, तिरंगे से ही हमारी पहचान है, और तिरंगा हमारे देश की शान है। अगर हम अपने ही ध्वज के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, तो फिर ये तो देश से ही नाइंसाफी होगी, हमारा अंतर्मन ही हमें गवाह नहीं देगा कि हमने क्या किया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि तिरंगा और जो हमारा राष्ट्रगान है, दोनों का सम्मान हम बराबर करें। अक्सर हमने कभी कभी देखा है कि कुछ लोग आधुनिकता में ऐसे बह जाते हैं, अरे ठीक है ना, राष्ट्रगान ही तो बज रहा है, वो नेचुरल काम करते रहते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर राष्ट्रगान की धुन हमें कहीं सुनाई दी, तो 52 सेकंड का तो
1: हाँ, खड़े होके
0: उसका सम्मान में खड़े हो जाए, तो ये हम सभी का फर्ज है, कर्तव्य है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्र ध्वज का और हमारे देश का मान हम जरूर रखें।
1: सच में जैसा बताए सुनीता, आन देश की शान, देश की हम संतान है, तीनों रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है।
0: बहुत सुंदर।

0: और रेणु जी देखिए, घड़ी हमें अब जाने का इशारा करती है, लेकिन चलते चलते हम अपने श्रोताओं से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने आचरण से राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लें,
1: अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, प्रकृति की रक्षा करें, स्वच्छता अपनाएं, जरूरतमंदों को साथ दें और समाज में सद्भाव, भाईचारे तथा एकता को मजबूत करें।
0: हमारी आजादी उन वीरों की अमूल्य विरासत है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक सशक्त बनाना हमारा दायित्व है। एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें जो आत्मनिर्भर हो, समृद्ध हो, संवेदनशील हो और विश्व पटल पर अपनी गौरवपूर्ण पहचान को और मजबूत करे।
1: और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को आकाशवाणी परिवार के
0: और से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। सभी सुनने वाले दोस्तों को रेणु का नमस्कार। और अपने खून से देश की सरहद को सींचते हैं हम, हर रोज मौत और तूफानों से खेलते हैं हम, दुश्मनों के मनसूबों पर पानी फेरते हैं हम। मेरा देश महफूज रहे इसलिए हर दर्द झेलते हैं हम। जिसका ताज हिमालय है, जहां बहती है गंगा, जहां अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहां नारा है, वह भारत देश हमारा है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नोएडा से शांता उपाली, अपराजिता रथ, भावना मल्होत्रा, गौरी बनर्जी, कल्याणी आचार्य, नीतू कंवर, रीना, रूमा सरकार, साधना घोष, साक्षी, शुभा, स्वप्ना स्वेन और सभी साथी। तो आइए आप सबकी पसंद से सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

सुनते हैं उपकार से ये देशभक्ति गीत। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज है। गुलशन मौरा ने इस गीत को लिखा। संगीत पाठ किया कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन।

0: करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
0: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
5: आपकी पसंद का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम हरमू से टीना वर्मा, कुशल, आमस, आभास, पूजा, ज्योति और अलका, किशोरगंज से सोनम, विनीता, गीतिका, मयूर, पीयूष और समीर, बरियातू से तनु, अनु, रीता, मित्तल और शिवांगी। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से ये गाना। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज है। इस गीत को लिखा इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया कल्याण जी, आनंद जी ने।
6: पहले जन्मी है जहां पे कला,

कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत आप श्रोताओं के नाम रातो रोड से अहिल्या देवी, रति कुमारी, कृति कुमारी, गंगा प्रसाद मिश्र, मालती देवी और परिवार के सभी सदस्य, देवी मंडप रोड से दिलीप कुमार पाठक, अश्विनी पाठक और आदर्श पाठक, कमरे से सुचित्रा देवी, पूजा देवी और सिद्धि और हैप्पी, कांके से मनोरमा देवी, संतोष कुमार, डेल्हा से सुरेंद्र, अशोक, हर्ष, अंजलि, अमीशा, आलोक और मनोरमा, आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से ये गीत। आवाजें लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और साथियों की है। शब्दों में पिरोया संतोष आनंद ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आप श्रोताओं के नाम कचहरी रोड से सतीश कुमार मिश्रा, गोपाल कुमार, जितेंद्र कुमार, करम टोली से गुड्डी, सुनीता, तनु, निक्की, छोटी, ब्रजेश, उमेश और रमेश जी परिवार, मेन रोड बड़काकाना से इफ्जाल ताज और बेवी तवस्सुम, मेन रोड बड़कागांव से आशीष, विकास, रंजना, गुड़िया, गोलू, भोला बाबू और उनके माता पिता, आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म परदेसी बाबू से ये गाना।

0: श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी और पूरे गृह लक्ष्मी परिवार की तरफ से मैं आपको शुभकामना देती हूँ।
1: और मैं भी साथ में, बहनों स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
0: तो शिल्पी, आज हम अपनी जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हम बहनों के लिए लेकर आए हैं बहुत सारी बातें।
1: हाँ बहनों, आज जब हमारा तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है तो मन गर्व से भर जाता है। आज का दिन सिर्फ छुट्टियां मनाने का नहीं बल्कि मुड़कर उस विकास यात्रा को देखने का भी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
0: 1947 का वह साल जब हम आजाद हुए थे तब हमारे पास सुई बनाने तक की भी तकनीक नहीं थी। लगता था जैसे हमारा देश बिखर रहा है, लेकिन भारत की मिट्टी का स्वभाव बिखरना नहीं बल्कि इतिहास रचना है।
1: बैलगाड़ी से अंतरिक्ष तक की विकास यात्रा के बारे में कहना ही क्या। जिस इसरो ने अपनी शुरुआत साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ढोकर की थी, आज उसी इसरो के चंद्रयान में चांद के उस हिस्से पर तिरंगा फहराया गया जहां आज कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। आज डिजिटल इंडिया हमारी ताकत है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और बहनों, जो भारत कभी अनाज और हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वह दुनिया को अनाज भी दे रहा है और मेड इन इंडिया के तहत फाइटर जेट्स और मिसाइलें जैसी वस्तुएं भी निर्यात कर रहा है।
1: सखियों, यह शानदार विकास यात्रा किसी एक व्यक्ति या सरकार की नहीं है, यह कहानी है भारत के नागरिकों के पसीने, उसकी मेहनत और उनके कभी न टूटने वाले हौसलों की।
0: बिल्कुल सही। तो बहनों, आइए आज के दिन खुद से वादा करें कि हम जहां भी हैं देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे।
1: और आइए मिलकर अपनी आजादी और इस स्वर्णिम विकास यात्रा का जश्न मनाएं। और इस जश्न में चार चांद लगाने के लिए प्रस्तुत हैं आज हमारी रेडियो सखी सुभाषिनी के गीत।
0: हाँ बहनों, क्योंकि भारत की विकास यात्रा जितनी खूबसूरत रही है उतना ही सुरीला रहा है गीतों का सफर। तभी तो कहते हैं अनेकता में एकता ही इस देश की शान है और संगीत ही तो हर हिंदुस्तानी की जान है। तो आइए इस खूबसूरत गाने के साथ अपनी आजादी और विकास का परचम लहराएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
4: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
4: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
8: बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और आज के सफर में हम दो सखियां हैं, मैं शिल्पी
9: और मैं हूँ सुभाषिनी। बहनों, आजादी के मतवालों ने जो परचम उस वक्त बुलंद किया था, आज उसी परचम की छांव में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में अपनी तरक्की और विकास का लोहा मनवा रहा है। सखियों, हमारे वीरों ने जिस आजाद और बुलंद भारत का परचम लहराया था, आज उसी आजाद हवा में हमारा हिंदुस्तान अपनी खुशहाली के नए रंग बिखेर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हमारा भारत सिर्फ तरक्की की राह पर आगे ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अपनी अद्भुत संस्कृति, त्योहारों और अनेकता में एकता के रंगों से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहा है। तो चलिए, सुभाषिनी के गीत में आपकी सखी आपको ले चलती है हमारी संस्कृति और मिट्टी की खुशबू के साथ, और सुनवाती है खुशहाली और नए भारत के रंगों से सजा ये बेहद ही सुरीला और सदाबहार गीत। दिल से सुनिए।

तो सखियों, आइए आज हमारे आंगन में हम अपने बचपन की उस पोटली को खोलें जिनमें हमारे बचपन की स्वप्ने यादें थी। वो आज भी हमारे दिल के कोने में कहीं न कहीं बसी हुई है। वो खुला नीला आकाश, बड़ा सा आंगन, मिट्टी की सुगंध, हम उम्र सहेलियां, रिश्तों की गर्माहट और खेलों से भरा अपना जीवन। भले ही वे सखियां अब बिछ

बढ़ गई, पर स्मृतियों के आंगन में आज भी डेंगा पानी चल रहा है। ऐसा लगता है कि कोई धप्पा कहकर आज फिर से जगा दिया हो। इधर उधर ताकती हूँ, झांकती हूँ, स्मृतियों के आंगन से देखूं तो लगता है कि बचपन कहीं गया नहीं है, वो आज भी यही है हमारे अंदर। वही गांव वाले पुराने घर के उस आंगन में हमारी प्रतीक्षा करता हुआ, और जी चाहता है मैं फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं। बरसात के पानी के साथ उस आंगन में छप छप करके नंगे पांव खूब खेलूं और भींग जाऊं। फिर एक बार वो आवाज सुनने को तरसूं, ओए लड़की बीमार पड़ जाएगी क्या, फिर स्कूल न जाने का बहाना करेगी, यही चाहती है ना। ओह, तरस जाती हूँ फिर से माँ की उस आवाज को सुनने के लिए, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से आज हमारा जीवन है।

0: हमारी नींद भी खुलती थी और रात भी कटती थी उस आंगन में ही। कैसे कहूँ और किसे छोड़ू, आज एक अनकही सी भावुकता हो रही है जब बात बचपन की खट्टी मीठी यादों से जुड़ी हो।
1: हाँ शिल्पी, तुम्हारी भावुकता को मैं समझ रही हूँ। सच, वो बचपन भी क्या बचपन था, जब आंगन अपना दर्पण था, हर शाम सुनहरी लगती थी, कितनी प्यारी वह दुनिया थी।
0: सुभाष ने, हमारी पूरी दुनिया सिमटी थी उस आंगन में, इसलिए शायद बचपन तो बीत गया या बीत जाता है, लेकिन उसकी यादें कभी नहीं बिसरती। वो हमारे मन के किसी कोने में ऐसे रची बसी है कि जब भी हम उन्हें याद करें ना, चेहरे पर अपने आप बिखेर देती है मुस्कान। हाँ, भले ही कुछ पलों के लिए। वो गर्मी का महीना जब फुआ अपने बच्चों को लेकर घर आती, ऐसा प्यार अब कहाँ। दादी, मम्मी, चाची, चाचा, उनके बच्चे, और सबसे मजेदार बात कि जो हमारी छोटकी फुआ थी वो हमारे साथ गुड्डे गुड़ियों का शादी ब्याह भी रचाती थी। सच, ऐसा आंगन अब कहाँ।

0: सच भले ही वो आंगन छूट गया, पर उसकी स्मृतियां आते ही मन बच्चा बन जाता है। कुछ ऐसी पुरानी यादें, वो किस्से आज भी हैं हमारे जहन में, और उनकी मिठास आज भी बिल्कुल वैसी बनी हुई है हमारे होठों पर।
1: हाँ हाँ, उस मिठास को बखूबी महसूस कर रही हूँ शिल्पी, और तुम्हारे चेहरे से सारी वो मिठास है ना, वो झलक रही है। और कुछ कुछ खबर है तुम्हारे बचपन की, उस किस्सों की भी, यानी रेडियो चोरी वाली बात है ना।
0: अच्छा सुभाषनी, जब तुमने हमें फिर से उस गलियारे में खींच ही दिया, तो भाई आज अपनी सखियों से मैं जरूर साझा करूंगी। बहनों, कुछ साल कैलेंडर के पन्नों पर दर्ज होते हैं और कुछ साल दिल की किताब में। सन 1991 भी शायद ऐसा ही दौर था। उस वक्त जिंदगी आज की तरह तेज नहीं थी, बेशक सुविधाएं तो कम थीं, लेकिन खुशियां बहुत थी। चीजें कम थीं, मगर यादें बहुत थी। तो आइए समय की घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस आंगन में, जहां की एक छोटी सी घटना आज भी हमारे दिल पर अमिट छाप छोड़ दी है, जो वर्षों बाद भी चेहरे पर मुस्कान और हाथ में रेडियो सेट लेकर बैठना चाहता तो है, पर खुला आंगन बिन आज मन तरस जाता है। बात 1991 की। उन दिनों हमारे गांव में बिजली नहीं थी, सच कहूं तो अच्छी सड़क भी नहीं, लेकिन हर एक साल रबी की फसलें जब कटती तो माँ गांव जाने को कहती। हालांकि हम खूब मन से जाने को तैयार नहीं होते थे। खैर, हाथ में ट्रांजिस्टर हो और साथ में कोई अच्छी सी किताबें, तो वक्त कैसे कट जाता है ये पता ही नहीं चलता। मार्च अप्रैल का महीना, हम चरपाई शाम होते ही आंगन में सजा देते थे, और मैं जानबूझकर सबसे किनारे वाली चरपाई को चुनती, ताकि रात में रेडियो पर विविध भारती से हवा महल और छाया गीत को सुन सकूं। 10 बजते ही सब लोग सो जाते, पर हमारी जो छोटकी बुआ थी, वो नाम से हमारी बुआ थी, वो हमारी सखी ज्यादा थी, वो कान गड़ाए रहती थी, छाया गीत सुनकर ही वो वहां से खिसकती थी। छाया गीत में प्रसारित होने वाले सभी गीतों के बोल को दिन भर का साथी बनाती और गुनगुनाती आंगन में फिरती। वैसे इस बात को मैं भी मानती हूं कि कुछ गीत के बोल हमारे दुख पर फाहा जैसे होते हैं, जो बड़ी राहत देते हैं। खैर, सुनिए मेरी दीवानगी, रेडियो प्रेम ऐसा कि कुछ पल भी इससे बिछड़ना मैं नहीं चाहती। सुबह से लेकर रात तक यही तो हमारा साथी बना रहा। हमने कहा ना, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, इसलिए रात की 8 बजते ही घर घर की किवाड़ बंद हो जाती थी, लेकिन हाँ, संध्या समाचार के बाद सब

गांव के सो जाते थे। एक रात कुछ चोरों ने गांव की सीमा लांघकर घुस गए हमारे गांव में। जागते रहो चारों तरफ से आवाजें आने लगी। दादी, मम्मी, चाची, फुआ सभी ने अपने अपने जेवर जवाहरात को छुपाने की कोशिश में जुट गईं और मैं हक्का बक्का ताकती रही। मन ही मन सोची, हमारा सबसे महंगा और सच्चा साथी है अपना ये छुटकू सा रेडियो, इसे बचाते हैं। आंगन के किनारे में सिलपट्टी रखा था और उसके चारों ओर ईंट, ताकि वो जो सिलपट्टी था थोड़ा ऊंचा हो जाए। मैं उसके बीच में अपने रेडियो को भी छुपा दी ताकि चोरों की नजर उस पर ना पड़े। सुबह सुबह जब आंगन को बुहारा जा रहा था तो ये सबके लिए अजूबा किस्सा बन गया। फिर मेरी बहुत हंसी उड़ाई गई और कहते हैं ना, वो दौर ही वैसा था, उम्र वैसी थी, जिसको सोचकर मन कहता है कि चलो उसी आंगन में एक बार फिर बन जाऊं वही 16-17 साल वाली शिल्पी। तो सखियों, ऐसा था हमारा आंगन, और अभी उस आंगन की और भी खूबसूरती बाकी है। आइए इस गीत के द्वारा सुनते हैं।

0: तो सखियों, ऐसा ही था हमारा आंगन। फिर मिलेंगे एक नई बात, नई कहानी, कुछ मीठी यादों के साथ।
1: बिल्कुल सखियों, और कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें कि प्रस्तुति थी आज के गृहलक्ष्मी कार्यक्रम की गौरव कुमार पांडे की। अब अपनी दोस्त सखियों को दीजिए इजाजत।
0: मैं शिल्पी
1: और मैं सुभाषिनी,
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी,
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण में सुनते हैं वार्ता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वीर वार्ताकार हैं राहुल कुमार गुरु, प्रस्तुति सहयोग सुनीता कुमारी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।
4: से शांतिपूर्ण आंदोलनों से लेकर सशस्त्र क्रांति तक कई रूप देखे। लाखों लोगों ने जेल यात्राएं सही, अपनी संपत्तियां खोई और अपने वीरों ने प्राणों की आहुति दी। इस आंदोलन की विशेषता यह रही कि इसमें हर वर्ग, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं और आम नागरिक ने सक्रिय भूमिका निभाई। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी हासिल की, जो सामूहिक संघर्ष, बलिदान और अदम्य इच्छा शक्ति का परिणाम था। स्वतंत्रता आंदोलन की कथा जब भी लिखी या पढ़ी जाती है, तब उसका स्वर प्रायः कुछ चुनिंदा महानायकों के इर्द गिर्द सिमट जाता है। निसंदेह महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का योगदान अतुलनीय है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि भारत

आजादी केवल इन चंद नामों की देन नहीं थी, इस महान संघर्ष की असली शक्ति उन अनगिनत गुमनामों चेहरों में निहित थी जिन्होंने बिना किसी पहचान या सम्मान की अपेक्षा के राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दरअसल स्वतंत्रता संग्राम जन आंदोलन था जिसकी जड़ें देश के सुदूर गांवों, कस्बों और छोटे शहरों तक फैली हुई थीं। यहाँ ऐसे असंख्य अनसंग हीरोज मौजूद थे जो कभी संदेशवाहक बनकर, कभी क्रांतिकारी बनकर, तो कभी आम नागरिक की भूमिका निभाते हुए अंग्रेजी हुकूमत की नींव को कमजोर करते रहे। इतिहास के मुख्यधारा के विमर्श में इनका जिक्र भले ही सीमित रहा हो, लेकिन इनकी भूमिका किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं आंकी जा सकती। आज जब देश अपनी स्वतंत्रता की यात्रा को स्मरण करता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने इतिहास के इन अनोखे अध्यायों को भी सामने लाएं। केवल प्रसिद्ध नामों का गुणगान करने से स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर नहीं उभरती। इस संदर्भ में हम चर्चित नामों के साथ साथ उन्हें भी याद करेंगे जिनकी गुमनाम कुर्बानियों ने आज़ादी की नींव को मजबूत किया। इन विभूतियों का योगदान न केवल उस समय के लिए निर्णायक था, बल्कि आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है। यदि स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा पर नज़र डालें तो महात्मा गांधी का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली दिखाई देता है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर जन आंदोलन खड़ा किया। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संघर्ष को आधुनिक सोच और वैश्विक दृष्टि से जोड़ा। उन्होंने युवाओं में वैज्ञानिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने का काम किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने संगठन और साहस के बल पर क्रांतिकारी गतिविधियों को मजबूत किया और अंत तक अंग्रेजों के हाथों नहीं पकड़े गए। महिलाओं की भूमिका भी इस संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। सरोजनी नायडू ने आंदोलन को जन जन पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाई। अरुणा असफली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराकर विद्रोह की प्रतीक बन गई। इस कड़ी में सुभाष चंद्र बोस का योगदान अत्यंत विशिष्ट रहा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। वहीं राष्ट्रीय विचारधारा को सशक्त करने में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल की त्रिमूर्ति की योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार बताया और जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता और न्याय को आंदोलन के मूल रूप में स्थापित किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज में समानता और अधिकारों की गारंटी होगी। इन सभी महान नेताओं और क्रांतिकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का ही परिणाम था कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। भारत का स्वतंत्रता संग्राम जितना व्यापक और बहुआयामी था, उतना ही उसका इतिहास भी विविध परतों में छिपा हुआ है। इस संघर्ष की मुख्य धारा में कुछ नाम बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन इनके समानांतर एक विशाल संसार उस अनसंग हीरोज का भी है जिनके योगदान के बिना आज़ादी की कहानी अधूरी रह जाती है। ये वो लोग थे जिन्होंने बिना किसी प्रसिद्धि, पद या मान सम्मान की अपेक्षा के राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। अनसंग हीरोज की विशेषता यह ही थी कि उनका संघर्ष स्थानीय होते हुए भी राष्ट्रीय प्रभाव रखता था। किसी ने गांव में जनसागरण किया तो किसी ने जंगलों में गुरिल्ला युद्ध छेड़ा, किसी ने भूमिगत रहकर संगठन खड़े किए तो किसी ने सीधे मोर्चे पर दुश्मन का सामना किया। उनके पास संसाधन कम थे लेकिन संकल्प अटूट था। यही कारण है कि उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अंग्रेजी सत्ता को बार बार चुनौती दी। आज जरूरत है कि इन गुमनाम वीरों को कहानियों को सामने लाया जाए ताकि नई पीढ़ी यह समझ सके कि स्वतंत्रता की नींव कितने अनदेखे और अनकहे बलिदानों पर टिकी हुई है। इन नामों के क्रम में हम राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हैं। अनसंग हीरोज की कहानी में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम अहम है। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया और 1925 के काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन की आर्थिक रीढ़ को तोड़ना था। बिस्मिल न केवल योद्धा थे बल्कि एक प्रभावशाली लेखक और कवि भी थे जिनकी रचनाएं युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाती। उनका संघर्ष पूर्णतः सशस्त्र और संगठनात्मक था जिसमें उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। अंततः उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनका बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का स्रोत बना। अशफाक उल्ला खान काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी थे और राम प्रसाद

मिलकर करीबी सहयोगी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनका योगदान सशस्त्र संघर्ष के रूप में था, जिन्होंने ब्रिटिश खजाने को लूट कर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने की योजना बनाई। उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया कि आज़ादी के लिए धर्म के ऊपर युद्ध लड़ना होगा, एकजुट होना होगा। उनका संघर्ष भूमिगत और साहसिक था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया और फांसी को हंसते हंसते स्वीकार किया। उदा देवी। उदा देवी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थीं। वह अवध क्षेत्र की पासी समुदाय से थीं और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत साहस दिखाया। सिकंदरबाग की लड़ाई में उन्होंने पेड़ पर चढ़कर कई ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। उनका प्रभाव स्थानीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर दलित और पिछड़े समुदायों में उन्होंने प्रतिरोध की भावना जगाई। उनका संघर्ष प्रत्यक्ष युद्ध का था, जिसमें उन्होंने हथियार उठाकर अंग्रेजों का सामना किया। उदा देवी की कहानी लंबे समय तक इतिहास में उपस्थित रही, लेकिन आज उन्हें एक बहादुर महिला योद्धा के रूप में सम्मान दिया जाता है। उनका बलिदान यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में हर वर्ग की भागीदारी थी। मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा बंगाल की एक वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 में तिरंगा लेकर जुलूस का नेतृत्व करते हुए वह अंग्रेजों की गोली का शिकार हुई। पश्चिम बंगाल में उनका प्रभाव बहुत गहरा था, खासकर ग्रामीण महिलाओं में। उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता की लड़ाई को जन जन तक पहुँचाया। उनका संघर्ष पूर्णतः अहिंसात्मक था, लेकिन उसमें अदम्य साहस था। गोली लगने के बाद भी वे वंदे मातरम बोलते रहीं। उनका बलिदान दर्शाता है कि उम्र स्वतंत्रता संग्राम में बाधा नहीं थी। प्रीतिलता वाड़ेदार। प्रीतिलता वाड़ेदार बंगाल के एक युवा क्रांतिकारी थीं। उन्होंने चटगांव शस्त्रागार विद्रोह में भाग लिया। उन्होंने यूरोपीय क्लब पर हमला किया, जहाँ भारतीयों के प्रवेश पर रोक थी। उनका प्रभाव खासकर बंगाल के युवाओं में देखा गया, जहाँ उन्होंने महिलाओं को भी सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। उनका जीवन साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी में से एक थे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका। बंगाल और बिहार में उनका प्रभाव व्यापक था, जहाँ वे युवाओं के लिए प्रेरणा बने। उनका संघर्ष सशस्त्र क्रांति का था। मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने फांसी के झूले को अपनाया। उनकी मुस्कान के साथ फांसी पर चढ़ने की घटना आज भी प्रेरणादायक है। भिखाजी कामा। भिखाजी कामा भारत की पहली महिला क्रांतिकारियों में से थी, जिन्होंने विदेश में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया। उनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, जहाँ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उनका संघर्ष वैचारिक और कूटनीतिक था। उन्होंने लेखन और भाषणों के जरिए ब्रिटिश शासन का विरोध किया। वीर सावरकर। वीर सावरकर एक प्रखर क्रांतिकारी और विचारक थे। उन्होंने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की और सशस्त्र क्रांति का समर्थन किया। महाराष्ट्र में उनका प्रभाव गहरा था। उन्होंने युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित किया। उनका संघर्ष सशस्त्र और वैचारिक दोनों था। उन्हें काला पानी की सजा दी गई, जहां उन्होंने कठोर यातनाएं झेली। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू दक्षिण भारत के उन दुर्लभ क्रांतिकारियों में से थे, जिन्होंने आदिवासी समुदाय को संगठित कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह खड़ा किया। 1922 से 1924 के बीच आंध्र प्रदेश के रामपा क्षेत्र में उन्होंने रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश दमनकारी नीतियों विशेषकर वन कानूनों के विरोध में था। उनका संघर्ष गुरिल्ला युद्ध शैली पर आधारित था, जिसमें वे जंगलों का उपयोग कर अंग्रेजी सेना को चकमा देते थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कई बार ब्रिटिश ठिकानों पर सफल हमले किए। अंततः अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर 1924 में गोली मार दी, लेकिन उनका बलिदान दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। वीर पांड्या कट्टाबोमन। वीर पांड्या कट्टाबोमन तमिलनाडु के एक साहसी शासक थे, जिन्होंने 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों की कर नीति के खिलाफ खुला विद्रोह किया। वे पंचाल कुरीची के पायलकर स्थानीय शासक थे और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कर देने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि विदेशी सत्ता को अपने ही देश में कर देना अन्यायपूर्ण है। इस मुद्दे पर अंग्रेजों से उनका संघर्ष बढ़ा और 1799 में उन्होंने सशस्त्र युद्ध का मार्ग अपनाया। उनका प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में फैल गया और वे प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। हालांकि अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा भारत के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नायकों में से एक है। 19वीं सदी के अंत में उन्होंने झारखंड क्षेत्र में उलगुलान का नेतृत्व किया, जो अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। बिरसा ने आदिवासी समाज को उनके अधिकारों, संस्कृति और पहचान के प्रति जागरूक

0: किया। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया, जैसे अंधविश्वासों का विरोध और एकता का संदेश। उनका आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक था। बिरसा मुंडा का प्रभाव पूरे आदिवासी क्षेत्र में गहराई से महसूस किया गया और उन्होंने आत्मगौरव की भावना जगाई। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अल्प आयु में ही उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनका आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया और आज भी उन्हें धरती आबा के रूप में सम्मानित किया जाता है। सिद्धो और कान्हू। सिद्धो और कान्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने 1855 में ब्रिटिश शासन और महाजनी शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया। झारखंड और बंगाल के संथाल परगना क्षेत्र में इस विद्रोह का उद्देश्य अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का अंत करना था। सिद्धो कान्हू ने हजारों आदिवासियों को संगठित कर एक व्यापक जनविद्रोह खड़ा किया, जिसने अंग्रेजी शासन को की नींव हिला दी। उनका संघर्ष पूरी तरह जन आधारित था, जिसमें स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। उन्होंने पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजों की आधुनिक सेना का सामना किया। हालांकि यह विद्रोह अंततः दबा दिया गया, दोनों भाइयों को मार दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव दूरगामी रहा। टांटिया भील, जिन्हें भारतीय रॉबिनहुड भी कहा जाता है, मध्य भारत के लिए प्रसिद्ध जनजाति नायक थे। उन्होंने 19वीं सदी में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। टांटिया भील का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि सामाजिक न्याय से भी जुड़ा था। उन्होंने जंगलों और पहाड़ी इलाकों का उपयोग कर अंग्रेजों को कई बार चकमा दिया। उनका संघर्ष पूरी तरह गुरिल्ला शैली का था, जिसमें तेज हमले और तुरंत पीछे हटना शामिल था। अंततः अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़ लिया और 1889 में फांसी दे दी। स्वतंत्रता संग्राम में अनसंग हीरोज के रूप में हमने कई नामों का जिक्र किया, लेकिन महिलाओं की भूमिका को शामिल किए बिना स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पूरी नहीं होती। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका अत्यंत प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण रही है। ये महिलाएं केवल पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर नेतृत्व, साहस और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अरुणा आसफ अली ही ऐसी प्रमुख हस्ती थी, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। उनका संघर्ष अहिंसात्मक था, लेकिन उसमें अद्भुत साहस और नेतृत्व क्षमता दिखाई देती है। वे लंबे समय तक भूमिगत रहकर आंदोलन को दिशा देती रहीं। उषा मेहता ने स्वतंत्रता संग्राम में तकनीकी मोर्चे पर ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने कांग्रेस रेडियो के माध्यम से अंग्रेजों की सेंसरशिप को चुनौती देते हुए देश भर में क्रांतिकारी संदेश पहुंचाए। वहीं कनकलता बरुआ ने असम में अपनी वीरता का परिचय दिया। मात्र 17 वर्ष की आयु में तिरंगा लेकर जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया और वीरगति प्राप्त की। इन महिलाओं के योगदान से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अनसंग हीरोज के रूप में महिलाओं की भूमिका न केवल प्रभावशाली थी बल्कि उसने इस संघर्ष को व्यापक और सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका दिया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ प्रसिद्ध नेताओं की कहानी नहीं बल्कि अनगिनत ज्ञात अज्ञात वीरों के सामूहिक त्याग, साहस और संघर्ष का परिणाम था। इस आंदोलन की वास्तविक शक्ति उन अनसंग हीरोज में निहित थी, जिन्होंने बिना किसी पहचान या सम्मान की अपेक्षा के राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आज आवश्यकता है हम इन अनदेखे बलिदानों को याद रखें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारी को समझें और देश के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखें।
1: शैक्षिक प्रसारण में आप सुन रहे थे वार्ता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वीर। वार्ताकार थे राहुल कुमार गुरु, प्रस्तुति सहयोग सुनीता कुमारी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं फिल्म बॉर्डर से ये गीत। आवाजें शंकर महादेवन, सोनाली राठौर और साथियों की है।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार रेगिस्तान बना दिया था।

कभी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली

फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा, सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

हमला आवर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते हैं जो 1962 में हुआ, वही सन 65 और वही 71। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन

कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनते हैं, फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से, आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम और कैलाश खेर की है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम

मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इसराइली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of Young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said, "This is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort."
1: Aaj jab hum desh ke log वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. Prime Minister Modi said since 2014, India has entered into free trade agreements with nearly 40 countries, creating enormous opportunities for Indian businesses and exporters.
1: 2014 के बाद दुनिया करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
0: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament.

0: and state assemblies without making it a political fight. Mr. Modi asked them to step forward to honor women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. In Kashmir, the Independence Day was celebrated across all 10 districts with patriotic fervor and enthusiasm. The main function was held at iconic Bakshi Stadium, where Chief Minister Umar Abdullah unfurled the national flag and took the salute at the ceremonial parade. Addressing the gathering, the Chief Minister said the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has made it clear that the decision taken by the ancestors of this part of Jammu and Kashmir to be with India was the correct one. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has called upon the people of the state to work together to build a more developed, prosperous and brighter West Bengal. In his Independence Day address through Akashvani Kolkata this morning, Mr. Adhikari extended his greetings to the people of the state on the 80th anniversary of independence. Tripura Governor Indira Sena Reddy Nallu paid heartfelt tribute to the freedom fighters on Independence Day, recalling their supreme sacrifices and urging people to draw inspiration from their courage, patriotism and dedication. President Draupadi Murmu today paid homage to the brave hearts at the National War Memorial on the occasion of 80th Independence Day. The President laid a wreath at the memorial and paid tributes to the martyrs. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the countrymen on the occasion of Parsi New Year, Navroz. In a social media post, Mr. Radhakrishnan prayed that this new year brings peace, prosperity and happiness to every family and inspire all to strengthen the bonds of unity, harmony and brotherhood in the nation. In a social media post, Mr. Modi said that the Parsi community's remarkable contribution across sectors has enriched the nation in countless ways. Prime Minister Narendra Modi has remembered Sri Aurobindo on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi called Sri Aurobindo a towering philosopher, naturalist, poet and thinker. In men's cricket, India were 101 for 1 against hosts Sri Lanka in the first test of the two-match series at Galle International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. And that is the end of this news bulletin.
1: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में जश्न आजादी की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 2047 तक विकसित भारत निर्माण का दोहराया संकल्प। केंद्र सरकार अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास युवाओं को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा। अपने संबोधनों में युवाओं, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर दिया विशेष जोर। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर बनाई जलेबी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। और चामोली सुरंग हादसे में झारखंड के 7 श्रमिक प्रभावित, एक की मौत तथा एक अन्य के फंसे होने की सूचना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत व पुनर्वास कार्य तेज। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का आह्वान किया।
2: दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को

0: एक्सोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी।
0: डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया, दुनिया में नौजवानों को नई ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है, पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में झंडोत्तोलन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। राज्यपाल ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक, कदाचार या किसी भी प्रकार की परीक्षा अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती और ऐसी घटनाएं युवाओं के भविष्य तथा उनके विश्वास को प्रभावित करती है। उन्होंने राज्य सरकार से परीक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा कर कमियों को दूर करने और अनुचित साधनों पर रोक लगाने की अपेक्षा जताई। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
2: नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। युवाओं, किसानों तथा वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है।
1: राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के युवाओं की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और उनके भविष्य को किसी माफिया, भ्रष्टाचार या अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि JPSC, JSSC समेत अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से आने वाले समय में बड़ी संख्या में नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से की जाएगी और रोजगार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
3: झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रांची के कार्यालय परिसर में उप महानिदेशक DC हेम्ब्रम ने झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में भी जश्न आजादी की धूम है। राज्य के सभी जिला में शान से तिरंगा फहराया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा स्थित पुलिस लाइन मैदान में मंत्री दीपक बिरुवा ने झंडोत्तोलन किया। वहीं लोहरदगा के बलदेव साहू स्टेडियम में आयोजित समारोह में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी और बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने मुख्य झंडोत्तोलन समारोह स्थल करजन ग्राउंड हजारीबाग में झंडोत्तोलन कर देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। मौके पर उन्होंने वीर सपूतों को नमन

0: किया। इधर सिमडेगा, पाकुड़, कोडरमा, सरायकेला समेत कई जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्वाचन सदन में झंडोत्तोलन किया। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा से पहले छात्रों ने स्टेडियम परिसर में जलेबी बनाई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड सरकार के साथ जारी गतिरोध पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि इस विधेयक से राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन से डरी हुई राज्य की वर्तमान सरकार मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है।
1: भारत सरकार ने एक सामितिक निर्णय लेते हुए राज्यों के इंटरेस्ट को खराब किए बिना एक प्रकार का जो है टैक्स रॉयल्टी ये लागू होगा। इससे पूरा देश प्रगतिशील होगा, राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिलेगी कि ये जो स्टूडेंट आंदोलन जो अभी चल रहा है इससे सरकार बैकफुट पर है। उस आंदोलन से लोगों का मन भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है।
0: उत्तराखंड के चामोली जिले में निर्माणाधीन सुरंग में गुरुवार को हुए हादसे में झारखंड के भी 7 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। इनमें एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य के फंसे होने की सूचना है। दुर्घटना में राज्य के कुल 5 श्रमिक घायल हुए हैं, जिनका इलाज निकटवर्ती अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिया गया है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,44,000 प्रति किलो है। राज्य में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में जश्न आजादी की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 2047 तक विकसित भारत निर्माण का दोहराया संकल्प। केंद्र सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास युवाओं को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा। अपने संबोधनों में युवाओं, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर दिया विशेष जोर। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर बनाई जलेबी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। और चामोली सुरंग हादसे में झारखंड के 7 श्रमिक प्रभावित, एक की मौत तथा एक अन्य के फंसे होने की सूचना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत व पुनर्वास कार्य तेज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं अनीता सेन।

अभी आप अनिता सेन से बंदिश सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं हरिहरन की आवाज में चंद गजलें।

अभी आप हरिहरन की आवाज में चंद गजलें सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold, and mobile phone manufacturing increased by 33-fold. He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions 100 times.
0: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The Prime Minister said, government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said, the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying the modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. He said India has launched the National Critical Minerals Mission and announced the Critical Mineral Corridor. Mr. Modi added that agreements are being signed with several countries and nations around the world are increasingly placing their trust in India. Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. He recalled the challenges posed by the COVID-19 pandemic and subsequent conflicts in Ukraine and West Asia. The Prime Minister said every nation around the world has turned towards managing and safeguarding its own interests, but unfortunately, during this period of crisis, some nations have played the game of weaponizing resources to flaunt their dominance, be it petrol, diesel and fertilizers.
0: Duniya apne paas jo kuch bhi hai usko weaponize karne mein lagi hai. Resource ka weaponize, petrol, diesel, fertilizer, dawaiyan, technology ki cheap, itna hi nahi bhubhag ko bhi weaponize kiya ja raha hai. Aur aise samay agar hum aatmanirbhar ke mantra ko lekar 10 saal sahi disha mein na chale hote to hum kalpana kar sakte hain ki aisi chunautiyon ka majbooti se muqabla kaise kar, aur hamari taiyariyan nirantar badhti ja rahi hai.
1: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in the parliament and state assemblies without making it a political fight.
0: Jald se jald हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में

0: देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की

0: आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
1: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी, जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
2: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
3: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
4: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्ची में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। सभी फौजी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हम चैन से बैठे हैं तो अब सब आप सबके बदौलत आप सरहद पर तैनात रहते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। शहीदों की लहू से लिखी है जो कहानी, हर दिल में गूंजती है वो अमर जवानी। चलो फिर से आज वह नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में भी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को सलाम है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: స్వయం ఇది కట్టుబడి భారతీయ సేన.
1: भारतीय सेना अपने खून से देश की सरहद को सींचते हैं, हर रोज मौत और तूफानों से खेलते हैं वो, दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरते हैं वो, मेरा देश महफूज रहे इसलिए हर दर्द झेलते हैं वो, जिसका ताज हिमालय है, जहां बहती है गंगा, जहां अनेकता में एकता है, वह भारत देश हमारा है. नफरत बुरी है न पालो इसे दिलों में, खालिश है निकालो इसे, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे.

0: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वे लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं उन्हें सलाम, ऐ वतन पर मिटने वालों, आपकी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है।

केशर की क्याली घुली हिमखंडों के संग शौर्य चक्र के मध्य में शस्य श्यामला रंग शौर्य समृद्धि में घुला अमन चैन का रंग खिला तिरंगा देखकर आ जाता आनंद। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ, अपना जीना मरना अब तक तेरे नाम ऐ तिरंगा करता हूँ। भारत माँ की जय।

सुंदर है जग में, नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहां हर जुमा पर सर्वधर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम पुराना वो भारत देश हमारा है, गगन भी झुके धरा भी गाए जय भारत, महका तिरंगा लहराए, लाखों बलिदानों की ये अमानत, रखनी है हमें हर हाल में सलामत।

जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इसी के साथ कार्यक्रम जय भारती यही समाप्त होता है। नमस्कार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान श्री मोदी ने शक्ति की सप्तधारा के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत का स्पष्ट रोड मैप रखा।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा की टुकड़ी भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। श्री सोरेन ने कहा कि युवाओं के समग्र विकास पर भी सरकार ध्यान दे रही है। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के सभी क्षेत्रों की विकास की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि संथाल परगना के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चायबासा स्थित पुलिस लाइन मैदान में मंत्री दीपक बिरुवा ने झंडोत्तोलन किया, जबकि लोहरदगा के बलदेव साहू स्टेडियम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी और बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही विकास योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने करजन ग्राउंड हजारीबाग में झंडोत्तोलन किया। इधर सिमडेगा, पाकुड़, कोडरमा, सरायकेला समेत

0: कई जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार के बयान की आलोचना की है। उन्होंने हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस विधेयक से राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन से डरी हुई राज्य की वर्तमान सरकार मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है।
1: भारत सरकार ने एक सामितिक निर्णय लेते हुए राज्यों के इंटरेस्ट को खराब किए बिना एक प्रकार का जो है टैक्स रॉयल्टी ये लागू होगा। इससे पूरा देश प्रगतिशील होगा, राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिलेगी कि ये जो स्टूडेंट आंदोलन जो अभी चल रहा है इससे सरकार बैकफुट पर है। उस आंदोलन से लोगों का मन भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है।
0: मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे, ब्रॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
0: पूर्वोत्तर डायरी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं हमारे संवाददाता की सिक्किम से भेजी इस रिपोर्ट के साथ। दरअसल हाल ही में ऐतिहासिक नाथुला दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार शुरू हुआ है। 6 वर्षों बाद ये व्यापार शुरू हो रहा है, तो इस संबंध में आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
2: प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहा नाथुला दर्रा लंबे समय से सिक्किम और तिब्बत को व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के आपसी संपर्क से जोड़ता रहा है। 6 साल बाद नाथुला के रास्ते सीमा व्यापार फिर शुरू होना इस ऐतिहासिक मार्ग के महत्व को दोबारा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 2026 के व्यापार सत्र की शुरुआत भारत और चीन के सीमा द्वारों के बीच नो मैन्स लैंड में आयोजित समारोह से हुई। इस दौरान सिक्किम सरकार और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने एक दूसरे को उपहार भेंट किए। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम शेरथांग ट्रेड मार्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री टीटी भूटिया मुख्य अतिथि रहे, जबकि क्षेत्रीय विधायक सह सलाहकार आमीन लेपचा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। मंत्री टीटी भूटिया ने नाथुला व्यापार की बहाली को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे सिक्किम की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि नाथुला के रास्ते सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली से यह क्षेत्र व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
3: The resumption of it is the reopening of new opportunities of our traders, entrepreneurs, transporters, local businesses and the people of Sikkim. It is also a symbol of friendship, cooperation and progress. Nathula has always been an important part of Sikkim's history. For centuries it connected people, cultures and trade across Himalayas. Today we are adding another important chapter to that proud history. The government of India has given special attention to the development of the northeast region and border areas under the visionary leadership of our honorable prime minister Sri Narendra Modi ji. Initiatives such as the Act East policy, PM Gati Shakti and the vision of Viksit Bharat have improved infrastructure connectivity and economic opportunities across the region. These initiatives are helping border states like Sikkim become important centers for trade, tourism and investment.
2: वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सचिव कर्मा डी यूत्सो ने बताया कि 6 साल के अंतराल के बाद व्यापार फिर शुरू हुआ है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को युद्ध स्तर पर तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि व्यापार की बहाली से क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और

0: के कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही नाथूला और शेरथांग को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और लोगों को इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक कचरा अपने साथ वापस ले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
1: वी हैव अ फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स एंड खदास बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स फ्रॉम बोथ साइड्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द टिबेट ऑटोनोमस रीजन व्हिच टुक प्लेस एट नाथूला गेट just a moment ago, and this marked a formal beginning of the new trade season after a gap of 6 years.
0: कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों को बॉर्डर ट्रेड पास और कैफेटेरिया आवंटन आदेश वितरित किए गए। नाथूला सीमा व्यापार की बहाली से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने, रोजगार के नए अवसर पैदा होने और सिक्किम के व्यापार एवं पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भूमिका मजबूत होने की उम्मीद है। मोइनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए नेहा गोस्वामी।
2: त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है, तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
3: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख है। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय है। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जैंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही किला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहाँ पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियाँ और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक

0: विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेवा जो टमाटर की चटनी है बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन है। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल है। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आए और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
1: हम आपको मेघालय लिए चलते हैं। मेघों के इस राज्य यानी मेघालय में एक विशेष पहल के तहत शिलोंग में एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से नागालैंड की समृद्ध विरासत संस्कृति का प्रदर्शन किया गया और साथ ही नागालैंड की मौखिक परंपरा के विषय में नई पीढ़ी को जागरूक किया गया। तो आइए हमारी संवाददाता अनुमिता की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
2: नागा समाज का इतिहास पीढ़ियों से बुजुर्गों की सुनाई कहानियों, लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ता आया है। यही परंपराएं उनकी समृद्ध संस्कृति और पहचान को आज भी जीवित रखे हुए है। इसी विषय पर बनी वीव्स ऑफ एम्पैथी अ जर्नी इनटू नागा ओरल हिस्ट्री नाम की डॉक्यूमेंट्री का हाल ही में शिलांग में प्रदर्शन किया गया। 25 जुलाई को असम राइफल्स ने लैथकौर स्थित अपने महानिदेशालय मुख्यालय में इसका आयोजन किया। यह डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट एम्पैथी की प्रस्तुति है। यह एक सामाजिक संस्था है जो असम राइफल्स और असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर शिक्षा, कला, कहानी और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में संवेदनशीलता, भावनात्मक स्वास्थ्य और आपसी समझ को बढ़ावा देती है। कोविड-19 के दौरान शुरू हुई यह संस्था स्कूलों, कॉलेजों और समाज में सहानुभूति का संदेश फैलाने का काम कर रही है। संस्था कई परियोजनाओं पर काम कर रही है, इनमें से एक नागा ओरल हिस्ट्री स्टोरीज ऑफ एम्पैथी है। इसका उद्देश्य नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं को लोगों तक पहुंचाना है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किस तरह छात्र अपने माता पिता और दादा दादी से बातचीत कर उनके जीवन के अनुभव और यादों को रिकॉर्ड करते हैं। इससे पुरानी और नई पीढ़ी के बीच संवाद बना रहता है और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है। इस फिल्म की परिकल्पना प्रोजेक्ट एम्पैथी की संस्थापक विवा लेखड़ा ने की है और इसका निर्देशन पराशर बरुआ ने किया है। इसमें नागा समाज की परंपराओं, संघर्ष, जीवन के अनुभवों और मूल्यों बुजुर्गों तथा युवाओं की आवाज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म सहानुभूति, मेल मिलाप और आदिवासी विरासत के संरक्षण का संदेश देती है। यह परियोजना बताती है कि मौखिक इतिहास केवल अतीत को याद रखने का माध्यम नहीं है, यह नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से सीखने, सवाल पूछने और उनके अनुभवों को समझने का अवसर भी देता है। कार्यक्रम के दौरान असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के गायक दल ने पहली बार पृथ्वी गीत प्रस्तुत किया। इसे एम्थी एंथम भी कहा जाता है। यह गीत करुणा, हौसले और बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का साथ देने का संदेश देता है। इस अवसर पर मौखिक इतिहास को सुरक्षित रखने और कहानी सुनाने की परंपरा को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। विवक्ताओं ने कहा कि जब युवा अपने बुजुर्गों की बात सुनते हैं और समझते हैं तभी संस्कृति और विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचती है। अनुमिता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।

0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख
1: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

अब आइए सुनते हैं फिल्म बॉर्डर से ये गाना। आवाजें सोनू निगम, रूपमा राठौर और साथियों की है। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

आइए सुनते हैं एलओसी कारगिल से ये देशभक्ति गीत अलका याग्निक की आवाज में।

आइए सुनते हैं फिल्म उपकार से ये गीत। आवाज महेंद्र कपूर और साथियों की है, गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

पूरब और पश्चिम से सुनते हैं ये गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक के दौरान देश की उपलब्धियों और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होंने विकसित भारत के लिए सप्तधारा का रोडमैप भी प्रस्तुत किया। झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा की टुकड़ी भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में राष्ट्रध्वज फहराया। उधर प्रमंडलीय मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों ने ध्वजारोहण किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान सम विश्वविद्यालय में हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। संस्थान के कुलपति अरुण कुमार झा ने रांची के हटिया स्थित कैंपस में ध्वजारोहण किया। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में धरनास्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम देश प्रेम का संदेश देता दिख रहा है। राज्य सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए छात्रों और अभ्यर्थियों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। चर्चा सुनिए, मोबाइल का सीमित प्रयोग, साथ ही भेंट वार्ता सुनेंगे, करे योग रहे निरोग। वार्ताकार नीतू कुमारी, भेंटकर्ता युवराज कुमार, सूत्रधार होंगे युवराज कुमार। प्रस्तुति प्रभु शरण की।

वतन की शान है तिरंगा, हर दिल की पहचान है तिरंगा। तिरंगे की आन, देश की शान, मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम, यही है हमारी पहचान। मित्रों, देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों में दिखाई देनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी, जहां हर मुलाकात में है नई जानकारियां, हर चर्चा में है नया विचार और हर गीत में छिपा है दिल को छू लेने वाला एहसास। मैं हूं आपका मित्र युवराज और अगले कुछ समय तक हम साथ बिताएंगे ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा से भरपूर एक खूबसूरत रेडियो यात्रा पर। आज के कार्यक्रम में होगी एक विशेष भेंट वार्ता, जिसमें हमारे सम्मानित अतिथि से जानेंगे कई महत्वपूर्ण बातें। इसके साथ होगी रोचक चर्चाएं और आपके मन को सुकून।

तो मित्रों आइए आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खास चर्चा के साथ, मोबाइल का सीमित प्रयोग। मित्रों आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। संचार से लेकर शिक्षा, बैंकिंग, मनोरंजन और जरूरी जानकारी प्राप्त करने तक मोबाइल ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। कुछ ही क्षणों में हम देश दुनिया की खबरें जान सकते हैं और अपने प्रियजनों से जुड़ सकते हैं, लेकिन सुविधा देने वाला यही मोबाइल जब जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे तो यह हमारे समय, स्वास्थ्य और रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। आज अक्सर देखा जा सकता है कि सुबह आँख खुलते ही मोबाइल अपने हाथों में आ जाता है और रात को सोने से पहले भी मोबाइल की स्क्रीन हमारे सामने होती है। भोजन करते समय भी, परिवार के साथ बैठते समय और यहाँ तक कि बातचीत करने के दौरान भी कई लोग बार बार मोबाइल फोन देखते रहते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। श्रोताओं, मोबाइल का अत्याधिक इस्तेमाल हमारी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, नींद के समय में कमी और दिनचर्या में असंतुलन जैसी परेशानी हो सकती है। बच्चों और किशोरों के लिए तो मोबाइल के उपयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पढ़ाई के समय मोबाइल का अनावश्यक इस्तेमाल उनका ध्यान भटका सकता है और खेलकूद तथा परिवार के साथ बिताया जाने वाला समय भी कम हो सकता है। मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब वह हमारे रिश्तों के बीच आने लगता है। एक ही कमरे में बैठ परिवार के सदस्य एक दूसरे से बातचीत करने के बजाय अपनी अपनी स्क्रीन में व्यस्त दिखाई देते हैं। इससे भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि मोबाइल हमारे जीवन को नियंत्रित ना करे, बल्कि हम मोबाइल का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करें। मित्रों इसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम अपनाए जा सकते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल केवल आवश्यक कार्यों के लिए करें और बिना वजह बार बार स्क्रीन देखने की आदतों से भी बचें। भोजन के समय, परिवार के साथ बातचीत के दौरान मोबाइल को दूर रखें। सोने से कुछ समय पहले मोबाइल से दूरी बनाना भी अच्छी आदत हो सकती है। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर माता-पिता को उम्र और आवश्यकता के अनुसार स्पष्ट नियम बनानी चाहिए तथा उन्हें खेल, पढ़ाई, किताबों और रचनात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि मोबाइल बुरा नहीं है, बल्कि उसका अनियंत्रित और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल समस्या बन सकता है। मोबाइल हमारा साधन है, जीवन का केंद्र नहीं। तकनीक का सही उपयोग वही है जो हमारे समय की बचत करे, ज्ञान बढ़ाए और रिश्तों को मजबूत बनाए। अंत में यह कहा जा सकता है कि मोबाइल को अपनी जरूरत बनाइए, अपनी आदत नहीं। सीमित और समझदारी से किया गया मोबाइल का प्रयोग हमें तकनीक का लाभ भी देगा और वास्तविक जीवन से हमारा जुड़ाव भी बनाए रखेगा। आइए आज हम संकल्प ले मोबाइल का उपयोग करेंगे, लेकिन मोबाइल को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। दोस्तों आज स्वतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं देशभक्ति से ओतप्रोत और मधुर गीत जो हमारे दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और गहरा करेंगे और हमें उन वीरों की याद दिलाएंगे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो श्रोताओं आइए सुरों के इस सफर में कुछ पल देश के नाम करते हैं। दिल में हिंदुस्तान का गौरव लिए सुनते हैं एक खूबसूरत देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, इस देशभक्ति गीत की गूंज हमारे मन में हमेशा यही संदेश जगाती रहेगी कि हमारा देश, हमारी मिट्टी और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हमारे लिए सर्वोपरि है। आइए हम सब मिलकर अपने देश की एकता, अखंडता और शांति को मजबूत बनाने का संकल्प ले। इसी संदेश और देश प्रेम की भावना के साथ हमने सुना फिल्म परदेश से यह देशभक्ति गीत, जिसे गाया है हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और आदित्य नारायण ने, और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। तो दोस्तों, इस गीत के सफर के बाद कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं एक भेंट वार्ता की ओर। मित्रों, आज की व्यस्त दिनचर्या में काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, पढ़ाई और बदलती जीवन शैली, इन सबके बीच मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखना एक चुनौती सा बन गया है। लेकिन क्या योग हमारे तनाव को कम करने में और जीवन में पॉजिटिवनेस लाने का एक सरल माध्यम बन सकता है? योग को दिनचर्या में

0: शामिल करने का सही तरीका क्या है, किन योगासनों से हमें लाभ मिल सकता है और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है योग विशेषज्ञ श्रीमती नीतू जी। करे योग रहे निरोग। श्रोताओं नमस्कार। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, पढ़ाई की चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारियां और बदलती जीवन शैली कहीं ना कहीं हमारे मन को तनाव से घेर लेती है। ऐसे में जरूरी है हम अपने शरीर के साथ साथ अपने मन और मस्तिष्क को भी स्वस्थ कैसे रखें। कहा भी गया है, तन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ और मन शांत तो जीवन आनंदमय। इसी महत्वपूर्ण विषय योग करे तनाव मुक्त रहे पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए आमंत्रित है हमारे खास मेहमान नीतू कुमारी जी, जो कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच है और योग इंस्ट्रक्टर भी है, जो कि शहर में अनेकों संस्थानों से जुड़ी हुई है और अपनी सेवाएं दे रही है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
1: जी नमस्कार।
0: अब मैडम, सबसे पहले बताइए हमारे श्रोताओं को योग क्या है और हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से प्रभावित करता है।
1: देखिए, योग एक प्राचीन पद्धति है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। योग करने से हमारा शरीर, श्वास और मन के बीच में एक सुंदर संतुलन बन पाता है।
0: जी जी।
1: जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं और वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं। हमारा मन ना बहुत चंचल होता है। वो कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी भूतकाल में चला जाता है और रिग्रेट में चला जाता है। तो वर्तमान क्षण में लाने के लिए हमें योग और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं।
0: जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि हमारा जो मन है चंचल है, तो इसी मन को शांत करने का एक तरीका है योग। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव बढ़ने का क्या कारण है? लोग इतने दौड़ भाग कर रहे हैं, अब कामों से परेशान है, तो जो तनाव हो रहा है या फिर चिंताएं जो बढ़ रही है, उसका क्या प्रमुख कारण है?
1: देखिए, आजकल सभी लोग काफी व्यस्त रहते हैं, है ना। आज लोगों की जिंदगी में बहुत व्यस्तता है। काम का ज्यादा दबाव, पढ़ाई, नौकरी, परिवार की जिम्मेदारियां, समय की कमी और भविष्य की चिंता तनाव का सबसे मुख्य कारण है। तो ऐसे समय में हमें, जैसे हमारी डेली की दिनचर्या होती है,
0: जी जी,
1: तो उस दिनचर्या में अगर हम योग को शामिल कर ले तो हम तनाव मुक्त रह सकते।
0: योग किस प्रकार से हमारे मन को शांत करने में सहायक हो सकता है और इसके लिए हमें कौन सा योग करनी चाहिए?
1: योग और प्राणायाम से मन शांत होता है
0: जी
1: और तनाव कम होता है। जैसे छोटे छोटे योग हम शुरुआती दौर पे कर सकते हैं, जैसे नाड़ी शोधन कर लिया, है ना, थोड़ा बॉडी रोटेशन कर लिया, वार्म अप कर लिया, योग निद्रा कर लिया। तो ये सब छोटे छोटे योग हैं जो थोड़े थोड़े समय में हम लोग कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से कर सकते। तो ये 10 से 15 मिनट हम लोग हर दिन सुबह में कर सकते हैं। अगर सुबह में समय नहीं मिल रहा है तो हम लोग दोपहर में या शाम में, जब भी समय मिले हम लोग कर सकते हैं इसे।
0: मतलब कहा जा सकता है कि 10 से 15 मिनट अगर हम अपने व्यस्त समय में अगर निकाले तो हम लोग उसको आराम से योग हम लोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आज के दौर में सभी वर्ग के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लोग थक से जाते हैं। अपनी शारीरिक और मन की थकान को कैसे दूर कर सकते हैं और कौन सा योग इसके लिए उपयुक्त रहेगा?
1: काम के बीच थोड़ा समय निकाल करके हम लोग योग कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में, है ना, हम लोग बैठे रहते हैं तो अगर बहुत स्ट्रेस हो रहा है या थकावट महसूस हो रही है तो हम ऑफिस में भी थोड़े समय निकाल के 5-10 मिनट हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग बॉडी रोटेशन कर सकते हैं। बॉडी रोटेशन के लिए हम लोग सर से, गर्दन से शुरू करेंगे और हर एक पार्ट को रोटेट करेंगे। जैसे गर्दन, तो 3 टाइम्स हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, बिल्कुल धीरे से, और 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं या कहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं तो हम लोग नाड़ी शोधन कर सकते हैं। नाड़ी शोधन करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। हमारा जो अंगूठा है वो राइट नोज पे रहेगा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों भावों के बीच में, और रिंग फिंगर हमारे बाएं नासिका पे। तो दाएं नासिका से श्वास लेनी है, थोड़ा कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करना है, फिर दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास को छोड़नी है, फिर कुछ सेकेंड

0: के बाद फिर बाएं नासिका से श्वास लेनी है, थोड़ी देर रोकनी है, फिर दाएं नासिका से श्वास छोड़नी है। तो इस तरह से हम नाड़ी शोधन 8 राउंड कर सकते हैं,
1: जी जी
0: जो हमारे मन को, माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करेगा। एक और आसन हम लोग कर सकते हैं, योग निद्रा।
1: जी
0: तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि योग निद्रा
1: निद्रा
0: मतलब निद्रा है
1: जी
0: ना। तो योग निद्रा अगर हमको लेटने का जगह है तो हम लेट के कर सकते हैं, और अगर लेटने का जगह नहीं है तो हम कुर्सी पे बैठ करके भी योग निद्रा को कर सकते हैं। योग निद्रा करने के लिए पैर के पास अपना ध्यान लेके जाना है, पैर का जो अंगुली होता है उस पे अपना ध्यान लेकर के जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे और एक साधारण श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, घुटने के पास ध्यान लेकर के जाएंगे, फिर एक साधारण श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, फिर थाई पे अपना ध्यान लेके जाएंगे, फिर श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। उस तरह से पूरे बॉडी के हर एक पार्ट पे हम अपना ध्यान लेकर के जाएंगे और एक साधारण श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट तक फिर आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो ये योग निद्रा करने से भी हमारे शरीर में काफी एनर्जी आती है और हमें बहुत सुकून मिलता है।
1: मैडम, आपने अभी चर्चा की नारी शोधन और योग निद्रा के बारे में, तो इसके लिए क्या कुछ कुछ खास उपयुक्त समय है या फिर किसी भी समय में इस योग को हम कर
0: नहीं,
1: सकते हैं?
0: आप देखिए, आप कभी भी कर सकते हैं।
1: जी
0: जब आपको बहुत मानसिक थकावट हो रही है, शारीरिक थकावट हो रही है, तो आप कहीं पे भी हैं, ऑफिस में हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप गाड़ी को साइड करके आप नारी शोधन और योग निद्रा कर सकते
1: कहा जा सकता है कोई भी समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है, कभी भी हम लोग
0: हैं।
1: इसको
0: कभी
1: कर
0: भी
1: सकते
0: ये सब छोटे
1: हैं।
0: छोटे जो हमारे योग
1: जी
0: हैं, प्राणायाम है, ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं।
1: शुरुआत में तनाव कम करने के लिए या फिर यूं कहे कि शुरुआत में कौन सा सरल और सुरक्षित योग अभ्यास सीखनी चाहिए?
0: देखिए, मैं तो कहूंगी कि शुरुआत बहुत छोटी होनी चाहिए।
1: जी
0: तो शुरुआती दौर पे जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, उठ के थोड़ा वार्म अप कर लिए है ना, थोड़ा बॉडी रोटेशन कर लिए और थोड़ा छोटे छोटे एक्सरसाइज कर लिए, जैसे तरासन कर लिए,
1: जी
0: वृक्षासन कर लिए, बाल आसन कर लिए, तितली आसन कर लिए। ये सब छोटे छोटे एक्सरसाइज है जो हम शुरुआती दौर पे कर सकते
1: तो कहा जाए कि छोटे छोटे भी एक्सरसाइज करके हम अपने आप को फिट रख
0: स्वस्थ
1: सकते
0: फिट।
1: हैं, स्वस्थ रख
0: बिल्कुल
1: सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि हम कोई बड़े एक्सरसाइज करें, छोटे एक्सरसाइज से भी हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: विद्यार्थियों और युवाओं में पढ़ाई, परीक्षा और करियर को लेकर तनाव में रहते हैं वो लोग, योग किस प्रकार से उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है?
0: देखिए, योग विद्यार्थियों को का तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर, ये सभी लोग जानते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए की दिनचर्या में जैसे हर चीज रूटीन में उनके रहते हैं, उसी तरह से योग को भी शामिल करें। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि नारी शोधन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं है ना, तरासन कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी योग है सूर्य नमस्कार।
1: सूर्य
0: जी,
1: नमस्कार जो कि
0: जिसमें बारह
1: प्रातःकालीन जो
0: जो
1: होता है।
0: प्रातःकालीन समय से चला आ रहा है, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि लोग सूर्य नमस्कार किया करते थे है ना। तो एक स्टूडेंट को सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है,
1: जी
0: 5 से 10 मिनट निकाल के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसमें 12 आसन होते हैं
1: जी
0: और ये शरीर मन को बिल्कुल तंदुरुस्त रख, शरीर के ग्रोथ के लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है।
1: अधिकतर देखा जाता है कि विद्यार्थियों में नींद की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। पढ़ने के समय क्या होता है कि उन लोगों को निद्रा सताने लगती है, नींद आने लगती है, या फिर यूं कहे कि अगर लोग बच्चे देर रात तक पढ़ रहे हैं तो फिर सवेरे में जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो या तो फिर ऐसे सिचुएशन में उनको कौन सा योग करें जिससे कि नींद की समस्या उनको ना परेशान करे?
0: देखिए, अगर नींद मुझे कब नहीं आती है रात में, दो कारण से नींद नहीं आती है। एक तो हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, और किन्हीं को जैसे नींद की समस्या भी होती। अगर नींद रात में नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो। तो उसके लिए आप बेड पे जाओ, 5-10 लंबी गहरी साधारण श्वास ले और छोड़े। उसके बाद आप योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा आपको आंखें बंद करके करनी है, आंखें बंद करें और अपना ध्यान बस शरीर के हर बॉडी पार्ट्स पे लेके जाए

0: और हर बॉडी पार्ट्स के पास ले जा करके एक लंबी गहरी श्वास ले और छोड़े। इस तरह से हम योग निद्रा कर सकते हैं जिससे हमें आसानी से नींद आती है।
1: कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों, समय की कमी हमेशा का शिकायत रहता है, तो ऐसी महिलाओं थोड़े समय में कौन सा योग कर सकती हैं और कैसे ये योग उनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है?
0: देखिए, जो कामकाजी महिलाएं होती है ना, वो काफी कामों में व्यस्त रहती हैं। गृहिणियां खासकर जो बच्चों के लिए तो समय निकालती हैं, परिवार के लिए समय निकालती
1: जी
0: हैं, लेकिन
1: जी
0: खुद के लिए समय नहीं
1: समय नहीं
0: निकाल
1: निकाल
0: नहीं
1: पाती है।
0: निकाल पाती हैं। तो पर उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है योग करना, क्योंकि अगर घर की गृहिणियां स्वस्थ रहेगी तो परिवार हमारा स्वस्थ रहेगा,
1: जी
0: है ना, बच्चों का विकास अच्छे से हो जाएगा। तो उन महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आप रूटीन में हर काम को करती हैं, वैसे ही अपने रूटीन में योग को लाइए, और ज्यादा कुछ नहीं, बस 10 से 15 मिनट कीजिए। तो महिलाएं घर में आराम से कर सकती हैं, जैसे योग निद्रा कर सकती है, भुजंग आसन कर सकती हैं, तरासन कर सकती हैं, वृक्षासन कर सकती हैं, तितली आसन कर सकती हैं, फिर एनिमल आसन भी कर सकती हैं। हाँ, तो ये सब आसन जो है ना, वो बहुत आसान है करना, बहुत इसके लिए बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत, बहुत आराम आराम से ये सब आसन को घर में बैठ करके हम लोग कर सकते।
1: बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि योग सबकी बस की बात नहीं है, तो ये कहाँ तक का सही है?
0: देखिए, योग हर कोई कर सकते हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सब लोग योग कर सकते हैं, है ना। योग बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम योग अपने फिटनेस के लिए करें, है ना, पर ये जरूरी नहीं है। कि फिटनेस तो रहती ही है ना, पर सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मन को शांत रखना। जब हमारा मन शांत होता है ना, तो हम निर्णय अच्छे तरीके से ले सकते, शांत मन से, पीसफुल माइंड से हम भविष्य का निर्णय ले सकते हैं, बच्चों के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो योग देखिए सब कोई कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। योग को जितना हम कठिन समझ के रखे हैं, उतना कठिन है नहीं। छोटे छोटे एक्सरसाइज, छोटे छोटे योग से हम शुरुआत कर सकते हैं।
1: तो कहा जा सकता है कि योग के हमें इंजॉय करना चाहिए। लोग इसे
0: बिल्कुल,
1: बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन ये कठिन है नहीं।
0: नहीं,
1: इसे
0: आप
1: अगर हम
0: इंज
1: इंजॉय
0: हाँ
1: करेंगे तो ये बहुत ही सरल
0: बहुत ही
1: रहे।
0: सरल होगा। आप इंजॉय के रूप में इसे लें, जैसे हमने बच्चों को योग कराना है ना, तो बच्चों को हम एनिमल आसन करवा दे, बच्चे काफी इंजॉय करेंगे। कैट की तरह बनना, ये मंकी पोज में आना, शेर की तरह दहाड़ मारना, तो ये सब एनिमल आसन है जो बच्चे काफी इंजॉय करते
1: और
0: हैं।
1: ऐसे भी खेल खेल में तो बच्चे लोग
0: खेल
1: ऐसे
0: खेल में
1: खेलते ही
0: बच्चे
1: रहते
0: करते हैं,
1: हैं।
0: हाँ। और बच्चे को ना सूर्य नमस्कार जरूर करवाना चाहिए। हाँ, सूर्य नमस्कार से ना बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास होता है, और पढ़ाई में कंसंट्रेशन काफी,
1: कि लोग ज्यादातर आजकल बहाना बनाते हैं कि समय की कमी है,
0: समय की
1: मुझे
0: कमी
1: समय
0: है
1: नहीं मिलता,
0: जी।
1: और काम का बोझ इतना अधिक होता जा रहा है कि बैठे बैठे वो थक सा जाते हैं। थोड़े समय में कौन सा एक्सरसाइज उन लोगों के लिए उपयोगिता साबित हो सकती है?
0: देखिए, अगर समय कम है ना आपके पास, तो आप नाड़ी शोधन कर लीजिए, और नाड़ी शोधन करने के बाद 5-10 मिनट का विश्राम कर लीजिए। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर की पहचान कैसे हो रही है, जैसे मैं नीतू हूँ, तो हमारा पहचान कैसे हो रहा है, इस शरीर से हो रहा है, और इस शरीर के अंदर क्या है, श्वास है। तो श्वास बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए, है ना। देखिए, हमारा जो लंग्स है ना, हम अपने लंग्स का मात्र 30% ही हम यूज करते, तो जब हम योग प्राणायाम करते हैं ना, तो हम अपने लंग्स का 90% इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा जो टॉक्सिन्स है ना, 90% टॉक्सिन्स हमारा श्वास के द्वारा ही बाहर निकलता है, और 10% टॉक्सिन्स मल मूत्र पसीने के द्वारा बाहर निकलता है। तो श्वास हमारे लिए इतना जरूरी है, लेकिन हम लोग कभी श्वास के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान कब जाता है, जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, अगर लिफ्ट बंद हो गया, सीढ़ी से मुझे सेकेंड
1: ऊपर
0: फ्लोर,
1: चढ़नी
0: हाँ,
1: है।
0: थर्ड फ्लोर पे चढ़ना पड़े, तब मुझे पता चलता है कि अरे मेरे अंदर कुछ है जो चल रहा है ना। ऐसे तो श्वास के ऊपर हमारा कभी ध्यान ही नहीं
1: कभी
0: जाता
1: नहीं
0: है।
1: गया। जी
0: तो हम जब योग और प्राणायाम करते हैं ना, तो हम शरीर, श्वास और मन के ऊपर काम करते हैं, हमारा मन बहुत रिलैक्स होता है।
1: अंत में चलते चलते हमारे

0: श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिसे वो लाभान्वित हो और अपने रोज की जिंदगी में योग को शामिल कर सके?
1: देखिए, मेरा संदेश है कि योग के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। रोज केवल 10 से 15 मिनट निकालें खुद के
0: जी
1: लिए और योग करें। खासकर महिलाओं को समय नहीं मिलता, तो महिलाएं अपने दिनचर्या में 5 से 10 मिनट निकालें खुद के लिए, है ना? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है खुद को स्वस्थ रखना। जैसे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी उठाती है, आपको भी अपने शरीर के लिए जिम्मेदारी है कि आप उसे स्वस्थ रखें। तो सब लोग अपने दिनचर्या में 5 से 10 मिनट योग को शामिल करें और डेली इसका अभ्यास करें। शुरुआती दौर पे थोड़े समय के लिए आप शुरू करें, फिर धीरे धीरे आप योग को अपने जीवन में थोड़ा समय को बढ़ाएं और डेली इसका अभ्यास करना चाहिए। देखिए, महिलाएं सुंदर दिखना चाहती हैं,
0: जी
1: ठीक है? आज के दौर में सलून जाते हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर जाते हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखूं।
0: जी
1: लेकिन जब वो योग करते हैं ना, तो अंदर से निखार आता है खिल करके, है ना? और वो जो ब्यूटी होती है, वो जो सुंदरता होती है ना, वो पूरे समय। तो योग हमें करनी चाहिए, बहुत सारे फायदे हैं इसके।
0: मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आइए, हमारे श्रोताओं को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताइए और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं वो आपकी बातों से काफ़ी प्रभावित होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मित्रों, योग विशेषज्ञ श्रीमती नीतू जी से बातचीत के माध्यम से आज हमें यह समझने का अवसर मिला कि योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का एक उपयोगी पद्धति है। श्रोताओं, उम्मीद है कि ये भेद वार्ता आप सबों को व्यस्त दिनचर्या में योग के लिए थोड़ा समय निकालने के लिए प्रेरित करेंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिकी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।

अभी हम सुन रहे थे कल्याणी, हम सुन रहे थे चर्चा मोबाइल का सीमित प्रयोग, और हमने सुना एक भेंट वार्ता, करे योग रहे निरोग। वार्ताकार थी नीतू कुमारी और इनसे हमारी मुलाकात करवा रहे थे युवराज कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। आज की कल्याणी संपन्न हुई। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए दोस्तों जानकारी लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर हम सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे और 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युवाणी।

शाम 5:30 पर औद्योगिक प्रसारण के अंतर्गत श्रमिक लोक, 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे और 6:02 पर किसान वाणी, 6:32 पर हमारी दुनिया, 6:45 पर आज हमारे प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश। 6:20 पर हम सुनेंगे क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार, 7:45 पर समाचार ध्वनि चित्र और रात्रि 8:00 इस सप्ताह संसद में, 8:15 पर एक रेडियो रिपोर्ट हम सुनेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित मुख्य समारोह पर आधारित प्रस्तुति स्वर ओली मिंज का, संकलन दिनेश कुमार लाल का, तकनीकी सहयोग राजीव खलखो, प्रियंका और मोहम्मद असद का, प्रस्तुतकर्ता प्रभुशरण और गौरव कुमार होंगे, संयोजन होगा जेवियर कंडोलना का। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9:00।

रात्रि 9:15 पर उर्दू में समाचार होंगे, 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम सुनेंगे मुंबई के ए श्रेणी कलाकार जुनाइन खान का सितार वादन। रात्रि 11 हिंदी में समाचार होंगे, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 11:10 पर मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त रही होगी।

कार्यक्रम संबंधी जानकारी अभी हम लोग ले रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की सांध्य बेला पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम सांझ सरगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शून्य से शिखर तक की परिभाषा गढ़ने वाले हमारे भारतवर्ष ने अपनी मिट्टी की खुशबू चहों ओर बिखेरी। जब पूरी सभ्यता संस्कृति करवटे ले रहा था, हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजा करती थीं। आइए सुने भारतवर्ष की ये गाथा।

अभी हम सुन रहे थे पूरब पश्चिम का ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज में। बोलो को लिखा था इंदिवर ने, धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, देश केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं होता, देश बनता है उसके लोगों से, उनकी मेहनत से, उनके सपनों से, उनकी ईमानदारी से और एक दूसरे के प्रति सम्मान से। हम कहते हैं मेरा देश, तो इसमें केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, संस्कृति, भाषा, परंपराएं और उम्मीदें शामिल हुआ करती हैं।

0: बोस द अनफॉरगेटिंग हीरो इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाज में। पुलकुली का था जावेद अख्तर ने, धुन तैयार की थी एआर रहमान ने।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो।
1: ओहो भूल ही

0: करती थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

दोस्तों, हम सुन रहे हैं फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सैनिक हैं। कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी हो, पहाड़ों की ऊंचाई हो या फिर समुद्र की गहराई, हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। जब हम अपने घर में चैन की नींद सोया करते हैं, तब कोई जवान सीमा पर जाग रहा होता है। उसके परिवार से दूर रहने की कीमत हम शायद कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, तो सबसे पहले उन वीर जवानों को नमन करना हमारा कर्तव्य है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन, अपना परिवार, सब कुछ समर्पित कर दिया।

फिल्म एलओसी कारगिल का ये गाना अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। और अब इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सांसरगम संपन्न हुआ।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक के दौरान देश की उपलब्धियों और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। इस मौके पर श्री गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया। उधर प्रमंडलीय मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों ने ध्वजारोहण किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान सम विश्वविद्यालय में हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। संस्थान के कुलाधिपति अरुण कुमार झा ने रांची के हटिया स्थित कैंपस में ध्वजारोहण किया। गुमला और खूंटी समेत कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में भारी बारिश के आसार हैं। 17 अगस्त को गुमला और सिमडेगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं 18 अगस्त को हजारीबाग समेत कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गाने। 5:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर सुनिए बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। 6:40 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश। 7:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी भारत का स्वतंत्रता दिवस। लोकगीत होगा अमरनाथ सावंत और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत भेंटवार्ता होगी तसर के पालन कैसे करें। भेंटवार्ताकार होंगे कोलाय बारी और इनसे बातें करेंगे डोबरो गुड़ेवली। 8:00 आप सुनिए इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से राज्य स्तरीय समन्वित रेडियो रिपोर्ट। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर सुनिए आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम जिसे रिलीज

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। श्रोताओं, आज हम सब मिलकर 80वें स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं। यह दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। इस अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष गुलदस्ता कार्यक्रम, जिसमें देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत गीतों का संग्रह है। तो आइए इस संगीत में यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला गीत हमने उस गीत को चुना है जो हमें जागरूक करता है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना है और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है।

श्रोताओं, यह गीत है मातृभूमि के प्रति समर्पण और बलिदान की भावना को दर्शाता है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हमारी मिट्टी और हमारा मन दोनों ही देश के लिए समर्पित है।

श्रोताओं, वह जोश से भरा गीत जिसने हर भारतीय के दिल में गर्व जगाया, यह देश है वीर जवानों का। यह गीत हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा का प्रतीक है।

बल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं।

देशभक्ति का अगला स्वर है हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। यह गीत हमें बताता है कि कठिनाइयों से लड़कर ही आज़ादी हासिल हुई है।

0: ये गीत है ए वतन आए वतन। ये गीत हर भारतीयों के दिल की धड़कन है जो हमें अपने वतन से प्रेम करना सिखाता है।
1: सुर में गाना सीखिए।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान पुठी जो कहर की नजर उस नजर

और अब इस गुलदस्ता कार्यक्रम का समापन करते हैं उस गीत से जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जी हाँ, ये गीत है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये गीत हमें सिखाता है कि हमें भविष्य की ओर देखना है और नए भारत का निर्माण करना है।

श्रोताओं, आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में हमने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ देशभक्ति के 6 अमर गीत प्रस्तुत किए। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश को और भी महान बनाएंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

और आई सुनते फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म पाकीज़ा से। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

अगला गीत है फिल्म साजन से, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अगला गीत है फिल्म अप्रैल फूल से, गायक लगा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम क्षमा करेंगे, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश ने आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की ताकि उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। इस मौके पर श्री गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। रांची में आंदोलनरत कुछ छात्र अस्पताल में इलाजरत हैं। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने चिकित्सकों और पुलिस से आज आंदोलन स्थल जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1000 किलोग्राम से अधिक डोडा लदे मालवाहक वाहन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर फरार होने में सफल रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में अगले कुछ घंटों के दौरान गुमला और खूंटी जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने के आसार हैं, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM 101.7 MHz पर, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम बंगला कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आज सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, अगर हम देखें तो आज़ादी के 80 साल, जी हाँ, खासकर अगर हम झारखंड की बातें करें तो झारखंड की माटी वीरों की माटी है। बिरसा मुंडा, सिंधु कानू, जयपाल सिंह मुंडा का सपना था एक स्वाभिमानी समाज का। आज 2026 में हम आज़ादी के 80वें साल में कदम रख चुके हैं और 2047 तक विकसित भारत का सपना अब सिर्फ सपना नहीं, हमारी जिंदगी है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1926 को हमें जिम्मेदारी मिली है। आज़ादी का मतलब सिर्फ छुट्टियां नहीं है या जश्न नहीं है, आज़ादी का मतलब है बेटी को स्कूल भेजने की आज़ादी, किसान को सही दाम की आज़ादी, युवाओं को रोजगार की आज़ादी। आइए हम शपथ ले कि हम अपने गांव, अपने जिला, अपने झारखंड को स्वच्छ, शिक्षित और नशा मुक्त बनाएं।
1: पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगा।
0: श्रोताओं, अब आइए हम चलते हैं स्वास्थ्य की ओर। जी हाँ, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कुपोषण में हरे साग सब्जियों का क्या महत्व है। ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम।
2: सबों को जोहार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम कुपोषण उपचार प्रबंधन से पिछले कुछ वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और मुझे खुशी होगी किसान भाइयों को अगर मैं कुपोषण से संबंधित कुछ बातें बता पाऊं। तो रमेश जी, आपको पहले तो धन्यवाद कि आपने यह मौका दिया मुझे। और कुपोषण एक बहुत बृहद विषय है, मैं रमेश जी, मैं बल्कि मैं आपसे ही चाहूँगा कि आप शुरुआत करें कि हम कहाँ से

0: शुरुआत हम वहां से करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में कि कुपोषण है क्या।
1: नमस्ते, कुपोषण मैंने जैसे बताया आपको कि ये बहुत बृहद विषय है। शाब्दिक अर्थ में मतलब अगर मान लिया शब्द की भाषा में चला जाए तो कुपोषण जो भी खराब पोषण होता है, कु मतलब खराब और पोषण मतलब पोषण, खाना पीना भोजन, तो जो भी खराब पोषण है, कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अपने उम्र के अनुसार या अपने लंबाई के अनुसार उसका वजन कम होता है तो वो भी कुपोषण है। और दूसरी तरफ ये भी माना जाएगा कि अगर किसी कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अपने उम्र के अनुसार या अपने लंबाई के अनुसार या ऊंचाई के अनुसार उसका वजन जितना मानक जो मानदंड है उससे कहीं ज्यादा है तो ये भी कुपोषण कहा जाएगा। लेकिन हमारा देश जो है वो अल्प पोषण से, कम पोषण की समस्याओं से गुजर रहा है, तो इसीलिए हम लोग अधिकतर समय कुपोषण मतलब भारतवर्ष में कम पोषण को मानते हैं। कम पोषण का मतलब हुआ कि अपने उम्र के अनुसार या और ऊंचाई या लंबाई के अनुसार अगर कम वजन का होते हैं कोई भी बच्चे या कोई भी व्यक्ति तो उनको हम कुपोषण मानते हैं।
0: तो इसके क्या कारण है?
1: देखिए, कुपोषण जो है एक सीधे तौर से ये संतुलित आहार की कमी से जुड़ा हुआ होता है।
0: अच्छा,
1: आप फिर बोलेंगे कि भाई ये संतुलित आहार क्या है, फिर मैं दोहराऊंगा कि संतुलित आहार खुद एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें निहित है। मैं इसे क्रम ही आपको बताना चाहूंगा। संतुलित आहार देखिए, आप अपने मैं ये जब बता रहा हूं तो अपने खाने की जो भोजन की थाली है उसका आप याद करते जाइए, ध्यान देते जाइए। और जब मैं बता रहा हूं, देखिए आपके थाली में, भोजन की थाली में मैं ये तीन ग्रुप बता रहा हूँ, तीन समूह बता रहा हूँ, इसी समूह के भोज्य पदार्थ आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है ऊर्जा या ताकत प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जो एनर्जी देते हैं, जैसे क्या, गेहूं, चावल, घी, चीनी, गुड़, घी, तेल, आलू, केला इत्यादि, इनमें तो इस तरह की चीजें जो है ये ताकत देते हैं, व्यक्ति को ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं। दूसरा ग्रुप है, क्यों मैं थोड़ा संक्षेप में जा रहा हूँ, दूसरा ग्रुप है शरीर के विकास और वृद्धि में, दोनों ही शारीरिक और मानसिक वृद्धि में मदद करने वाले पदार्थ, जैसे दूध, दूध से बनी हुई चीजें, सभी प्रकार की दालें, दालों है ना, बहुत सारे जितने बहुत सारी तरह की दालें उनमें से कोई एक या दो है ना, और मांसाहारी भोजन भी इसी ग्रुप में आते हैं, मांस, मछली, अंडा इत्यादि जो भी है, ये दूसरा ग्रुप है, ये शरीर का विकास और वृद्धि में मदद करते हैं।
0: अच्छा,
1: तीसरा जो ग्रुप है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले, रोग प्रतिरोधक, जैसे आजकल अंग्रेजी में हम लोग अंग्रेजी क्योंकि ज्यादा समझते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं ना, कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, हम लोगों ने कोविड में बहुत ये सब बहुत तरीके अपनाए कि कैसे हम अपने इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो तीसरा ग्रुप है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर भोज्य पदार्थ। क्या क्या है इसमें? साग, हरी पत्तेदार सब्जियां, किसी भी तरह के और सब्जियां और मौसमी फल, ये तीन ग्रुप, ये अलग अलग तीन ग्रुप मैंने बताए। आपको समझ में आ गया होगा, आपने अपने अपने थाली खाने की थाली को अनुमान लगाया होगा और इमेजिन किया होगा, कल्पना की होगी कि आप वो आपके इस खाने की थाली कैसी होती है। ये जो खाने की थाली है ये तीनों ग्रुप के जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, इसके बिल्कुल तो तालमेल के वजह से ये संतुलित आहार बनता है। इसी संतुलित आहार की कमी की वजह से ये कुपोषण का जो सफर है वो शुरुआत होती है।
0: अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि हम अगर किसानों की बातें करें, गांव की बातें करें, तो गांव में ऐसा है कि हरी साग सब्जी हम आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत जिससे हमारे किसान भाई बहन करते हैं, साग सब्जियां करते हैं, लेकिन फिर भी इसका सेवन बच्चे या लोग कम कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों?
1: देखिए, ये मैं बोलूंगा कि जानकारी और जानकारी का अभाव, कुछ जागरूकता का अभाव, लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद हम बहुत मतलब हाईटेक वाली चीजें, बहुत हाईफाई वाली चीजों का सेवन करेंगे तभी हमारे बच्चों की सेहत बनेगी या फिर हमारे भी

0: तो उन चीजों से ही बनती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप, मैंने जो बताया ना, आप तीन ग्रुप में देखिए, हमारे किसान भाइयों को, या फिर जो मैं कहूंगा कि जो जो हमारे ग्रामीण परिवेश में पलने वाले बच्चे या फिर व्यक्ति, उनके लिए देखिए कितनी आसानी से तीनों ग्रुप के जो जो भोज पदार्थ एकदम बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, पहला ग्रुप था ऊर्जा ताकत प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, उसमें से क्या क्या हुआ, गेहूं चावल बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चीनी गुड़ मान लिया कि खरीदने नहीं पाएंगे, या फिर घी तेल आप नहीं खरीद, आलू आप आसानी से उपजा पाते हैं, अब ये इसको आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप है शरीर के विकास और वृद्धि में मदद करने वाले पदार्थ, चलिए मान लिया कि दूध, हम लोग गाँव में गाय अच्छी तरह से सभी पालते हैं, लेकिन हम लोग दूध साधारणतः दूध नहीं निकालते और बच्चों को इनका सेवन हम लोग बहुत नहीं करा पाते। दाल, जैसे हमने बताया कि इस ग्रुप में दाल भी आते हैं। दाल देखिए, अब हमारे गांव में ये मतलब विभिन्न तरह की दालें उपजाई जाती हैं, लेकिन हम लोग इनका सेवन बहुत संतुलित रूप में नहीं करते हैं। तीसरा ग्रुप मैंने बहुत, ये तो और ही मतलब आसानी से उपलब्ध होने वाला जो भोज्य पदार्थ का ग्रुप है, जैसे मैंने बताया था, तीसरा ग्रुप था क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला या सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर। इसमें तुम्हें साग, हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर अन्य कोई भी सब्जियां, ये आसानी से हम लोग उपजा पाएंगे और आसानी से उपजा पाएंगे और आसानी से अपने परिवार के सभी सदस्यों का, क्यों क्यों ही बच्चे, क्यों ही बड़े, सभी लोगों के भोजन, और खास करके हम लोग संतुलित भोजन का हम लोग उपलब्धता कर पाएंगे और अपने परिवार का हम लोग भरपूर ख्याल रख पाएंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारियां दी। अंततः हमारे किसान भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों, कभी भी आप अपने अपना वो एक जो है ना, वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स वाले जो हीन भावना ना रखें कि हमारे पास धन धान्य की कमी है तो हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह आप अपने बहुत सीमित संसाधनों से ही, अपने अपने घरों में जो सीमित संसाधनों से बहुत मतलब पैसे नहीं खर्च करके भी अपने अपने परिवार के सदस्यों के संतुलित भोजन का हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की हम लोग कामना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। हमें उम्मीद है हमारे किसान भाई बहन आपके जानकारियों से लाभ जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो इसी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए सप्तधारा की घोषणा। युवाओं को संसाधनों की नहीं होने दी जाएगी कमी। राज्य भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शान से लहराया तिरंगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर दिया जोर। जश्न आजादी पर समूचे राज्य में दिखा देशभक्ति का जोश और जज्बा। विधानसभा, राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत कई स्थानों पर ध्वजारोहण। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। न्याय की आवाज की बुलंद। गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। और गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। और अब समाचार विस्तार से। देश ने आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक के दौरान देश की उपलब्धियों और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की

0: जानकारी दी। उन्होंने विकसित भारत के लिए सप्तधारा का रोडमैप भी प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने का आह्वान करते हुए उन्हें संसाधनों और सहयोग की कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया।
1: गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय करते हुए कहा कि इससे महिलाओं की मजबूती के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के अपने लक्ष्य को पहले ही पार कर चुकी है।
1: बेटियां जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
0: झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा की टुकड़ी भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सुधारात्मक कार्यों का भी जिक्र किया। श्री सोरेन ने राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया।
2: मेरे युवा साथियों, रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसे झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्योग, एमएसएमई, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप के क्षेत्रों में भी लाखों नए अवसर तैयार हों।
0: उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्यपाल ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताएं स्वीकार नहीं की जा सकती। श्री गंगवार ने परीक्षा प्रणाली की कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: परीक्षा व्यवस्था में प्रश्न पत्र लीक, कदाचार अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के मनोबल और भविष्य को प्रभावित करती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली की कमियों की गहन समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
0: स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के अलग अलग जिलों में मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चायबासा में मंत्री दीपक बिरवा ने झंडोत्तोलन किया, जबकि लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी और बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य कुमार, जबकि रामगढ़ में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देवघर में मंत्री हफीजुल हसन और पलामू में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्वजारोहण किया और राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी साझा की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर

0: घाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इस बात पर जोर दिया कि देश हमेशा उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा लेता रहेगा। जश्न आजादी पर समूचे राज्य में देशभक्ति का जोश और जज्बा देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधानसभा के अधिकारी और कर्मी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान श्री महतो ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया।
1: झारखंड की धरती पर स्वतंत्रता का स्मरण करते हैं तो हम बाबा तिलका मांझी ने 1784 में अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का बिगुल बजाया। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने 1855 में संथाल हुल के नेतृत्व दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती किया।
0: स्वतंत्रता दिवस पर हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं से प्रमंडल के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में उपायुक्तों ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत अन्य जगहों पर राष्ट्रध्वज फहराया गया। रांची में छात्रों का आंदोलन आज 22वें दिन भी जारी रहा। राज्य सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए छात्रों और अभ्यर्थियों ने आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। राज्य के कई इलाकों में 18 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। आज गुमला और खूंटी समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में भारी बारिश की संभावना है। 17 अगस्त को गुमला और सिमडेगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं 18 अगस्त को हजारीबाग समेत कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए सप्तधारा की घोषणा, युवाओं को संसाधनों की नहीं होने दी जाएगी कमी। राज्य भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शान से लहराया तिरंगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर दिया जोर। जश्न आजादी पर समूचे राज्य में दिखा देशभक्ति का जोश और जज्बा। विधानसभा राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत कई स्थानों पर ध्वजारोहण। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। न्याय की आवाज की बुलंद, गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। और गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। गोड्डा के गांधी मैदान में श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव जी ने तिरंगा फहराया। मंत्री श्री यादव ने परेड की सलामी लेकर जिले वासियों को संबोधित कर जिला सहित राज्य में विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया है।
2: स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा हरिया खेल खोसा ये खासी जागरी खूब पैसा और पूरा स्वास्थ्य सदाएं जे स्वास्थ्य एवं ये सुस्वा सेवा लजरूम क्या ध्यान धन में संसार असं एवं पूर्ण इकान्जान देशों ने प्रगति हुई है।
1: गोड्डा महागामा नए रेल मार्ग के साथ गोड्डा में बन रहे वासिंग पिट का निरीक्षण करने डीआरएम मनीष गुप्ता गोड्डा पहुंचे। गत दिनों निरीक्षण के दौरान डीआरएम श्री गुप्ता ने भागलपुर गोड्डा रेल मार्ग से सेफ्टी से जुड़ी मामले का निरीक्षण किया।
3: प्राइमरीली तो आज विजिट जो है हमारे भागलपुर गोड्डा वाला सेक्शन में सेफ्टी को लेकर है। ट्रैक SMT TRD और बाकी जो हम लोगों के इक्विपमेंट्स हैं, हम लोगों के एसेट्स हैं, उनके रखरखाव से रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है।
1: वहीं मानसून के गतिशील होने के साथ किसान खेती कार्य में लगे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर।
0: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आइए सुने, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम ये संदेश।
1: जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां। आज हम उस महान भारत के स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं जिसके लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अंबेडकर, उन सभी महान विभूतियों को जिनके त्याग और संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता का एक अमूल्य उपहार दिया। झारखंड के इस पवित्र धरती ने भी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और न्याय के लिए अनेक महान योद्धा देश को दिए, जिनमें से हमारे राज्य के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, फूलो जानू, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी और हमारे सभी अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही मैं दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को भी सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन, आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष को समर्पित किया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अधिकार संघर्ष से मिलते हैं और विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति भी सहभागी बने। स्वतंत्रता

केवल राजनीतिक आजादी का नाम नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर युवा को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले, हर किसान को समृद्धि मिले, हर महिला आत्मनिर्भर बने, हर झारखंडी अपना भाषा संस्कृति परंपरा पर गर्व के साथ आगे बढ़े और सभी को समान अवसर मिले, समान सम्मान और न्याय के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में है और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर एक नए पड़ाव पर खड़ा है। हमारे प्यारे झारखंडवासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास का एक तिथि ही नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायक ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। इसलिए आज जब हम स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं, तब सबसे पहले उस विरासत को नमन करना हमारा कर्तव्य है जिसने झारखंड की आत्मा को आकार दिया। हमारे लिए संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी है। जल, जंगल और जमीन के साथ संतुलित जीवन जीने की जो जीवन दृष्टि हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, आज पूरा विश्व उसी दिशा में समाधान खोज रहा है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सभ्यता सदियों से इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो और हमारे सभी महान नायकों ने केवल अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया बल्कि एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सम्मान, समानता, सामुदायिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जीवन का आधार हो। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता में अग्रणी हो, जहां हमारी सभी भाषाएं, साहित्य के लोक कला, संस्कृति, संगीत, विरासत नई पीढ़ी तक सम्मानपूर्वक पहुंच सके, जहां लाह, तसर, बांस, मिलेट, औषधीय पौधे और लघु वनोपज केवल पारंपरिक आजीविका न रहे बल्कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़कर लाखों परिवारों की आय का आधार बने, जहां ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करे, जहां विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलन विकसित हो। झारखंड केवल भारत का एक राज्य नहीं है, यह भारत की आदिवासी चेतना का केंद्र है और हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं बल्कि पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति, समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल से बने। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में झारखंड पूरे देश को यह दिखाएगा कि विकास और प्राकृतिक आधुनिकता और परंपरा, उद्योग और पर्यावरण के बीच टकराव नहीं बल्कि संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मेरे युवा साथियों, हमारे विरासत हमें पहचान देती है लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देती है। यदि हमें अगले 25 वर्षों का झारखंड बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। आपका शिक्षा, आपका कौशल, आत्मविश्वास और आपके सपने ही विकसित झारखंड की असली पूंजी है। मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर विशेष रूप से आपसे संवाद करना चाहता हूँ। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए यह हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो, उनके प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरी एक पीढ़ी का विश्वास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच में झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके मेहनत को किसी भी माफिया, किसी भी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के

कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि उसके संलिप्तता सिद्ध होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही हम बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराने की भी राजनीति नहीं करेंगे। न्याय होगा और निष्पक्ष होगा। साथियों, सिर्फ दोषियों को पकड़ना ही समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे भविष्य में कोई भी युवाओं के सपने के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित होना, पारदर्शी और तकनीकी सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, उत्तर कुंजी एवं OMR की समयबद्ध उपलब्धता, परीक्षा प्रक्रिया में बहुस्तरीय जवाबदेही और ऐसी व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता अपवाद नहीं बल्कि एक नियम हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं सरकार के साथ आपकी सहभागिता चाहते हैं, इसलिए हमने छात्रों की बात छात्रों के साथ अभियान प्रारंभ किया है। मैं चाहता हूं कि झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षाविद और प्रत्येक अभिभावक परीक्षा सुधार में इस अभियान का सहभागी बने। हम उनके सुझाव सुनेंगे, विशेषज्ञों के साथ उनका अध्ययन करेंगे और जहां संभव होगा उन्हें नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लागू करेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है सबसे अच्छी परीक्षा व्यवस्था वही होगी जिसमें बनाने वाले विद्यार्थियों के भी भागीदारी हो। मेरे युवा साथियों, रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसा झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्यमी, MSME, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाएं और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी लाखों नए अवसर तैयार हों। इसलिए आने वाले समय में JPSC, JSSC तथा अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जाएंगी, ताकि युवाओं को अवसर भी मिले और व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत हो। मैं आज झारखंड के प्रत्येक युवा से केवल एक आग्रह करना चाहता हूं, अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए, अपना परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके सपनों का रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। मैं झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य नहीं मांगता, मैं उनका विश्वास भी मांगता हूं, और उस विश्वास को बनाए रखना मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थी को भरोसा हो, समाज को विश्वास हो और देश झारखंड का उदाहरण दे। मैं किसानों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। झारखंड की आत्मा उसके खेतों में बसती है। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत नींव है। हमने किसानों को सिंचाई, बीज समर्थन मूल्य, कृषि यांत्रिकरण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया है। राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य के लगभग 2,15,000 एकड़ जमीन पर वृक्षारोपण किया गया है और लगभग 3,00,000 परिवारों को आजीविका के नए माध्यम से जोड़ा गया है। इनके द्वारा उत्पादित आम विदेशों में भी सफलतापूर्वक निर्यात भी किया गया है। हमारा लक्ष्य केवल खेती को सहारा देना नहीं बल्कि खेती को लाभकारी बनाना है। आने वाले वर्षों में हमारा प्रयास होगा कि झारखंड का किसान केवल धान उत्पादक बनकर ना रहे बल्कि कृषि उद्यमी बने। हम फल, सब्जी, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुकुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, लाह, तसर, मिलेट, औषधि पौधों और लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई गति देंगे। साथियों, किसी भी राज्य की आर्थिक शक्ति केवल बड़े उद्योग से ही नहीं बल्कि लाखों छोटे उद्यमियों से बनती है। झारखंड के युवा, कारीगर, बुनकर, महिला स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पी और छोटे उद्यमी हमारे अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत है। MSME क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण
एवं प्रभावकारी भूमिका निभाता है।

साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में झारखंड में 16 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी MSME हैं। इनमें 8 लाख से अधिक सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं, जो 60 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे औद्योगिक वातावरण तैयार करने का है, जहां स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। हर जिले में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग विकसित हों, स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन मिले और युवा को अपने ही जिले में सम्मानजनक रोजगार मिले। हाल ही में हमारी सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन राज्य के विकास को दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इस राष्ट्र मंच पर उद्योग जगत, निवेशकों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के साथ उद्योग, पर्यटन, IT, AI, आधारभूत संरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। सरकार के प्रयासों के कारण कंसल्टेशन में प्रमुख कॉरपोरेट समूह के साथ साथ लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इन निवेश प्रस्तावों से राज्य के 22,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा देश भर में हो रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 3 वर्षों से लगातार हमारी बहनों, दीदियों के चेहरे पर मुस्कान की गारंटी बन गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 2,500 रुपये प्रति माह नियमित वित्तीय सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और अपनी उद्यमशीलता का विकास करने में ज़्यादा सक्षम हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपया का आर्थिक लाभ सीधे लाभुकों के खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हमारा अगला लक्ष्य इससे भी बड़ा है। हम चाहते हैं कि झारखंड की महिलाएं न केवल योजनाओं की लाभार्थी रहे, बल्कि किसान उत्पादक संगठन की नेता बने, उद्यमी बने, निर्यातक बने, डिजिटल अर्थव्यवस्था की सहभागी बने, झारखंड की नई विकास यात्रा का अग्रदूत बने। ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल के माध्यम से संगठित होकर स्वावलंबन एवं आर्थिक आत्मनिर्भर की मिसाल बन रही हैं। सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित प्लास ब्रांड अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 3.25 लाख से अधिक सखी मंडल का गठन कर 35 लाख परिवारों को सखी मंडल में जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि चक्रीय निधि एवं सामुदायिक निवेश निधि के रूप में तथा 20,000 करोड़ रुपए बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण महिलाओं के हाथों से संचालित गुमला जिले का जोहार रागी मिशन एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। महज 10 महिलाओं के साथ वर्ष 2022 से शुरू हुआ रागी मिशन और बाजरा प्रोसेसिंग आज 35,000 से अधिक किसानों और 500 से अधिक महिला शेयर धारकों की आजीविका का सशक्त साधन तथा ग्रामोदय से भारत का उदय का एक प्रेरक मिसाल बन गया है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव देहात में रहने वाली माताएं, बहनें झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में अग्रसर है। साथियों, स्वास्थ्य केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता का आधार है। हमारा उद्देश्य ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है, जो शहर और गांव दोनों के नागरिकों को समान चिकित्सा सुविधा दे। हम आधुनिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमेडिसिन और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। पंचायतों में दवा दुकान खोलने के वादे को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारी सरकार राज्य के सभी पंचायत

0: को डेडिकेटेड एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका संचालन स्थानीय ग्राम एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद में भी निर्माण कार्य किए। ग्रासरूट लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक बनाने का कार्य किया जाएगा। हम बीमारी के इलाज से अधिक रोकथाम, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य जागरूकता पर बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड का प्रत्येक नागरिक यह विश्वास करे कि कठिन से कठिन बीमारी के समय भी उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है। हमारा लक्ष्य केवल बेहतर अस्पताल बनाना नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य सक्षम और आत्मविश्वासी झारखंड का निर्माण करना है। प्यारे झारखंड वासियों, आज जब हम स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहे हैं और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा एक नए पड़ाव पर खड़ा है, तब यह समय केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का नहीं, बल्कि आने वाले 25 वर्षों का दिशा तय करने का है। हमारा सपना ऐसा झारखंड है जहां विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जहां झारखंड अस्मिता और आधुनिक प्रगति के साथ आगे बढ़े, जहां किसान सम्मान के साथ समृद्धि का जीवन जिए, जहां महिलाएं विकास की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बने, जहां हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, जहां हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और जहां प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सबसे पहले झारखंड के लोगों को मिले। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां विकास की पहचान केवल ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि ऊंचे अवसरों से हो, जहां हमारी प्रगति केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई दे। मुझे झारखंड की जनता पर पूरा विश्वास है, मुझे अपने किसानों पर विश्वास है, मुझे अपनी माताओं और बहनों पर विश्वास है और सबसे अधिक मुझे अपने युवाओं पर विश्वास है। यही युवा आने वाले झारखंड की नई पहचान लिखेंगे, यही युवा झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, ऐसा झारखंड बनाएं जो समृद्ध भी होगा, संवेदनशील भी होगा, आधुनिक भी होगा, अपनी जड़ों से जुड़ा भी रहेगा, विकासशील भी और न्यायपूर्ण भी होगा। यही हमारा स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का सम्मान होगा। यही भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, फूलो जानो, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलांबर पीतांबर, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो और दिसोम गुरु शिबू सोरेन जैसे महान व्यक्तियों के संघर्ष को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय झारखंड, जय हिंद, जोहार।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश अभी हम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी रांची अब रोरेमन राकेश कुमार मिश्रा से नागपुरी में हफ्ता।
3: आप सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

इसके साथ ही हमारा ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सुनीता हांसदा
2: डोबरो बुड़ो लितकिंग पेते
1: जोहार। किसान भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। आप सभी श्रोताओं को फिर से हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा किसान वाणी कार्यक्रम अब आप सुन पा रहे हैं शाम के 7:30। तो किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हर बार की तरह हम कार्यक्रम में नई जानकारी, नई चर्चा और कुछ नए मनोरंजन लेकर के आते हैं आज के इस पावन दिन पर। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त यानी कि हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: सुनीता जी, ऐसो सारी खजेती सिंह पुनी सी अब भारत दिसुम रिया दमुल दिलां रिया नेन रासलोगन असड़ा रे सनाम दिसुम होड़ को उन्डो अब अचास हग्या को आलिंग डोबरो बुड़ियल उन्डो सुनीता तिकिंग पैते इसु इसो पूरे सुगड़ हियातिंग सिविल जोहार लिंग चलाबुतने अमर रास बास्ते दिसुम दमुल पुरो रे

0: ᱟᱵᱚ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱩᱰᱩᱜ ᱵᱤᱴᱟᱭ ᱠᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱭᱨᱯᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱩᱰᱩᱜ ᱵᱤᱴᱟᱭ ᱠᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱭᱨᱯᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤ
1: भावनाओं को व्यक्त कर सके, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सके।
0: ऐसो सारी का जी ऐसो नेता तक इनकी जगह रहा बहुत सारे के अबू अनेन भारत दिसम दो बरसो सिर में जो इंग्रेज को आजारी रे बुटाई के ना नेको आजारी ते अबू फुयोरन लगे चिमिन मारा लड़ाई को हो बायना जीवन से नोयना अबू झांसी के रानी ते को मन से नोयना सुभाष चंद्र बोस ते को मना महात्मा गांधी ते को ईशो पूरे गे कुयन को हंते दिसम दमोल रे लड़ाई रे को जीवन को दाहे कड़े ते तिसिंग अबू सुकुर हंसते मना अबू इनको बुड़ बुटा को तन लो ते अबू मर ऐसो रास मास्ते अब दमुल दिला वो मनाते हैं अंडो आको वो उड़ बिठा कुआ जाओ सिर में गे हुजू तन नामा पीढ़ी रहन की स्कूल कॉलेज को पढ़ाओ तन माई बाबू को अंडो चासी आ गया को सब दिसम रहन को गे वो नैन दिन वो हियातिंग मिसे को का।
1: फिर से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी शुभकामना के साथ किसान भाइयों बहनों आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपके आपको कार्यक्रम की ओर लेके चलते हैं। किसान भाइयों बहनों, हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं मनोरंजन के कुछ गीत जो हो लोक गीत पर आधारित है। आइए सुनते हैं अमरनाथ सामर और साथियों के स्वर में।
0: yeah.

0: किसान भाइयों बहनों, आपने आनंद लिया अमरनाथ सामंत और साथियों के स्वर में ये हो लोकगीत। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
2: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
1: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
3: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
1: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
4: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिले हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
1: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
5: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
6: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ, मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
1: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
7: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार

0: नए कदम उठाती जा रही है।
1: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
2: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों बहनों, इन संदेशों के बाद आइए आपको सुनवाते हैं आज के मेहमान भेंट वार्ता में तसर कीट पालन के बारे में कोलाई बारी के द्वारा, और उनसे बातें कर रहे हैं डोबरो बुड़ीवली। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
4: तिसिंग अलिंग डोबर बुड़ल तिकिंग आकाशवाणी चायबासा कार्यक्रम किसान बाड़ी परिवार पैते आबेना हतो सदर पीढ़ी चुंबलाय रे मेना थिया कोई बसो सो सतुर लिंग बिटायना चास अग्या किंग अबेन लोगे जपगर लगित ते तो जपगर या विषय दो मेना गया मेन दो आबेना उपरुम अबेन तेगे जगर तबे
5: अलिंग ने दो हतो दो तलिंग कोई बसो सो सतु बारकुंडी पोस्ट ऑफिस सदर चायबासा ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱠᱚᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱞᱩᱜᱮᱢ ᱠᱚᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱠᱚᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱵᱚ ᱫᱮᱥᱤ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱮᱢ ᱠᱚᱴᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱮᱛᱮ ᱮᱱᱠᱟ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱮᱛᱚᱞ ᱰᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱟᱬᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱫᱚ

इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते।

0: क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: आज का हमारा ये किसान वाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नई जानकारियों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो कार्यक्रम से सुनीता हांसदा और
2: डोबरो बोडल तिकिंग पैते जोहार।

अब आप वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इन मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण बैठक एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार है। इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का

उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी था और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष के कई दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण

व्याकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में

कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के एक आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाले रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कृत सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन ने विधेयक विपक्ष द्वारा पेश संशोधन को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम की सभी 6 अंतरों के गायन के रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे।
उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए

0: स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लोह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा के प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akashwani, a review of Parliament proceedings read by Akhila. This was
2: Akashwani ke Ranchi Kendr se hum bol rahe hain. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित मुख्य समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट अब हम सुनेंगे। प्रस्तुति स्वर है ओली मंच का, संकलन दिनेश कुमार लाल, तकनीकी सहयोग है राजीव खलको, प्रियंका और मोहम्मद असद का, प्रस्तुतकर्ता प्रभुशरण और गौरव कुमार, संयोजन है जेवियर कंडुलना का।
3: अस्सीवां स्वतंत्रता दिवस झारखंड में पारंपरिक रूप से मनाया गया। मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।
4: समीक्षा क्रम में मध्य से
3: उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन,
5: जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास की एक तिथि नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायकों ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमी में अग्रणी हो, जहाँ हमारी भाषाएं, साहित्य, लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक सम्मान पूर्वक पहुंच सके, जहाँ ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करें, जहाँ विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं

0: बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलित विकास हो। मेरे प्यारे युवा साथियों, हमारी विरासत हमें पहचान देती है, लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देते हैं। यदि हमें अगले 25 वर्ष का झारखंड बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मन से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों और कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा संबंधित गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। ये पूरे देश के सामने गंभीर चुनौती है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ उसे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का युवा है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भविष्य है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका विश्वास है। इसलिए केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है। मैं किसानों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। झारखंड की आत्मा उसके खेतों में बसती है। हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत नींव भी है। राज्य की कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम फल, सब्जी, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, लाह, तसर, मिलेट, औषधि पौधों और लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। हाल में ही हमारी सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस राष्ट्रीय मंच पर उद्योग जगत, निवेशकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों तथा उद्योग, पर्यटन, आईटी, एआई, आधारभूत संरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। सरकार के प्रयास के कारण कंसल्टेशन में प्रमुख कॉरपोरेट समूह के साथ लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 MOU हस्ताक्षर किए गए हैं। मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा देश में हो रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 3 वर्षों से लगातार हमारी बहनों, दीदियों के चेहरे पर मुस्कान की गारंटी बन गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 2,500 रुपये प्रतिमाह नियमित वित्तीय सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं।
1: उधर उपराजधानी दुमका में माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली परेड की सलामी ली और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
2: आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान, संघर्ष, त्याग और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये पावन अवसर उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का दिन है, जिनके संघर्षों ने हमें स्वतंत्र भारत का नागरिक कहलाने का गौरव प्रदान किया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्र

0: शेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई तथा सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। हमारे झारखंड की धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका मांझी, नीलांबर, पीतांबर तथा अनेक ज्ञात अज्ञात वीरों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा का संदेश दिया। प्रिय साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आत्मविश्वास और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, किसानों तथा वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए युवाओं से ड्रग्स तथा सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया है। मैं आप सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप स्वयं नशा मुक्त रहें, अपने साथियों को जागरूक करें तथा अपने शिक्षण संस्थानों और समाज में नशा मुक्त के संदेश वाहक बने।
1: इधर झारखंड विधानसभा में माननीय अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ महतो ने ध्वजारोहण किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
2: आज हम सब भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और तिरंगे को सलाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये एक उत्सव नहीं बल्कि हमने इतिहास के उस पन्नों को स्मरण कर रहे हैं जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कुर्बानी, बलिदान सारा चीज लिखित है। साथ ही भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या एक समुदाय का काम नहीं है, क्षेत्र के संघर्ष का परिणाम, एक सब लोगों के मिलकर जो संघर्ष का परिणाम था उसी का फलस्वरूप हम लोग इस देश को आजाद कर पाए हैं। और इसमें हमारे देश के जो अगुवा नेता थे महात्मा गांधी, जिनके सत्य और अहिंसा का जो मार्ग था इसको अपनाकर देश को आजाद करने का हमें एक शक्ति, एक ताकत मिला था। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आधुनिक भारत को निर्माण करने के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए अदम्य साहस और पूर्ण समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया, इसी तरह भारत की धरती ने भी स्वतंत्रता संग्राम को असाधारण बलिदान दिए, जैसे खुदीराम बोस जो कम उम्र में फांसी के मंच तक चढ़ने में द्विधाबोध नहीं किए और हमारे युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत बना। और जब हम झारखंड की धरती पर स्वतंत्रता का स्मरण करते हैं तो हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा हमारे सामने आती है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा बाबा तिलका मांझी ने 1784 में अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का बिगुल बजाया। सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने 1855 में संथाल हुल के नेतृत्व दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के साथ साथ अपने समाज के अधिकार, आत्मसम्मान और अस्तित्व की आवाज को भी मजबूत किया।
1: झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति श्री महेश शरद चंद्र सोनाक ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और जन समुदाय के समक्ष ध्वजारोहण किया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
3: रिमझिम फुहारों और सुहावने मौसम में आज पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां जिले का स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। पूर्वी सिंहभूम का मुख्य समारोह जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान बिष्टुपुर में संपन्न हुआ, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने मिली जुली परेड की सलामी ली।

0: ध्वजारोहण कर उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा,
1: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों, भारत के महापुरुषों, वीर शहीदों तथा राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। झारखंड और विशेषकर पूर्वी सिंहभूम की धरती वीरता, संघर्ष, त्याग और जन भागीदारी की समृद्ध परंपरा की साक्षी रही है। यह पावन दिवस हमें उन महान बलिदानों को स्मरण करने के साथ साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने की प्रेरणा देता है। विकास की इस यात्रा में समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुँचे, प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, युवाओं को अवसर मिले, महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़े तथा हमारा जिला समावेशी और सशक्त बने। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लें। झारखंड में प्रथम सिकल सेल एनीमिया प्रयोगशाला का शुभारंभ सदर अस्पताल पूर्वी सिंहभूम में टाटा फाउंडेशन एवं CCMB भारत सरकार के सहयोग से किया गया है। दिनांक 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पूर्वी सिंहभूम के सभी ग्रामीण इलाकों में लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना प्रखंड डुमरिया अंतर्गत कंटासोल में 2 एकड़ में कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण एवं वनोपज के विपणन हेतु MEZ संरचना का निर्माण किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 5 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। जिला प्रशासन जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कटिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जिले का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। जय हिंद, जय झारखंड।
0: सरायकेला खरसवां जिले का मुख्य समारोह बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां जिले के कई गणमान्य लोग, स्कूली बच्चे और आम जनमानस उपस्थित थे। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने मिलीजुली परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने जनमानस को संबोधित कर कहा,
2: आज का यह ऐतिहासिक दिन और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र नायकों और अमर शहीदों को नमन करने का दिन, जिनके अतुलनीय त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे यह सरायकेला खरसावां की पावन धरा क्रांति और संस्कृति की अद्भुत स्थली रही है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शान भैरव और अमर सिंह पोटो हो जैसे वीरों के पर चिन्हों पर चलते हुए इस क्षेत्र में आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। खरसावां का इतिहास हमें सिखाता है कि अपनी माटी, अधिकार और स्वाभिमान के लिए कैसे अडिग रहा जाता है। सरायकेला की विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य शैली हमारी सांस्कृतिक आत्मा है। जिला प्रशासन इस कला और इसके कलाकारों के संरक्षण एवं वैश्विक मंचों पर प्रोत्साहन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन वर्ष 2026 में सरायकेला खरसावां को समृद्धि और सशक्तिकरण की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार की दूरगामी योजनाओं तथा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। श्री मनोज वर्मी जी, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां के मार्गदर्शन निर्देशानुसार जिलों को अपराध बनाने की एवं सभी को सुरक्षा का माहौल प्रदान करने में जिला पुलिस प्रशासन बेहतर कार्य कर रही है। सबसे हर्ष की बात है कि बीते दिनों में कुछ दिन पहले यहाँ से कुछ नक्सलियों को जिला प्रशासन ने बिल्कुल अपनी निशानदेही पे बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद के लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे हमारा जिला अपूर्णतः नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। आइए आज के इस अवसर पर हम अपने अमर शहीदों के सपनों को, झारखंड को एक समृद्ध आत्मनिर्भर विकसित सरायकेला खरसावां के निर्माण का संकल्प दोहराए। पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय
0: झारखंड। इस तरह 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जमशेदपुर से विवेक कुमार आदित्य, राजीव रंजन तिवारी, जितेंद्र कुमार मांझी और कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय के साथ मैं निमिषा बिरोले।
3: उधर कोला

0: खान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा में हुए झंडोत्तोलन की रिपोर्ट आकाशवाणी चाईबासा के प्रतिनिधि द्वारा।
1: हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 80वीं स्वतंत्रता दिवस पश्चिम सिंहभूम में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी गैर सरकारी संस्थानों स्कूल कॉलेजों में झंडोत्तोलन किया गया। पश्चिम सिंहभूम में मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ, जहां झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरवा ने परेड की सलामी ली, तत्पश्चात झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर मंत्री दीपक बिरवा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
2: प्यारे देशवासियों, यह दिन हम सबके लिए अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का दिन है। हम सब अपनी आजादी का 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्राधीनता से मुक्ति का त्यौहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग और बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृतियों को श्रद्धापूर्ण सम्मान करता हूँ।
1: मंत्री दीपक बिरवा ने विकास योजनाओं पर जानकारी देते हुए कहा,
2: वर्तमान में हमारी सरकार देश एवं जिला के विकास कार्यों को गति देने के लिए कृत संकल्प है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत कुल 21,030 परिवारों के लिए 420 करोड़ 60 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जिसमें से 1,141 आवासों को का निर्माण पूर्ण कर लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2024-25 कुल 18,938 परिवारों के लिए 227 करोड़ 25 लाख 60 हजार की वित्तीय स्वीकृति दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला ने विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिरसा हरित ग्राम योजनाओं के क्रियान्वयन में अपार सफलता पाई है। इस चालू वर्ष में सभी प्रखंडों के किसान भाइयों ने प्रखंड में लगाए गए आम स्टॉलों एवं अन्य माध्यमों से आम एवं अन्य फलों उत्पादन की बिक्री कर 1,30,00,000 की शानदार आय अर्जित किया है।
1: और इस तरह पूरे पश्चिमी सिंहभूम में 80वीं स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार, प्रस्तुति स्वर सुनीता हांसदा, बाह्य ध्वनि अंकन सह संपादन रमेश दास और सहायक संजीत राणा और देवजीत बोस।
0: उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय हजारीबाग में झंडोत्तोलन की रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि द्वारा।
3: उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह करजन ग्राउंड स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त श्री विजय कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त श्री गुप्ता ने जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी।
4: सर्वप्रथम मैं अपने उद्भाषण में सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 49 वर्ष की उम्र की सभी महिलाओं को दिसंबर से लेकर हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि बैंक खाते के माध्यम से दिया जा रहा है। जुलाई 2026 में कुल 282,641 महिला बहनों को सम्मानित किया जा चुका है। सावित्री देवी फूले शक्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में सावित्री देवी फूले किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को ई विद्यावाहिनी पोर्टल एवं 18-19 वर्ष की किशोरियों को सावित्री देवी फूले किशोरी समृद्धि योजना के पोर्टल के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 13,43,09,000 रुपए का आवंटन उपलब्ध कराया गया है, जिसे सुयोग्य लाभुकों के

0: किया जाना है। निःशुल्क साइकिल योजना उन्नति का पहिया के तहत द्वितीय वर्ष 2026-27 में हजारीबाग जिला अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 के अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़े जाति के 17,322 छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया जा रहा है। जिला में विभिन्न पेंशन योजनाओं में कुल 2,43,691 लाभुकों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है। पिछले 6 महीने में 14,481 नए लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा गया है।
1: इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और वीर गति प्राप्त शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। साथ ही परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों, सरकारी विभाग तथा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। इसी तरह हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालयों, विद्यालयों, स्काउट एवं गाइड भवन, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अपने सहयोगी विक्रम कुमार रंजन, अभिषेक कुमार, सैयद मासूम अहमद और सुनील कुमार के साथ हजारीबाग से मैं राजीव कुमार।
2: पलामू जिला का मुख्य समारोह डाल्टनगंज स्थित पुलिस स्टेडियम में मनाया गया। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के पलामू जिला के सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अदम्य उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां माननीय वित्त मंत्री, वाणिज्य कर योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य विभाग झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा ध्वजारोहण किया गया और मिलीजुली परेड की सलामी भी ली गई। इस स्वर्णिम अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर,
4: आप सबको हार्दिक मुबारकबाद पेश करते मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर पलामू के सर्वांगीण विकास का संकल्प लें। मैं बहुत ही संक्षेप में ये बताना चाहूँगा, यहाँ के जंगलों में कीमती जड़ी बूटी, लाह कथा और केंदू पत्ता जैसे वन संपदा और वन प्राणियों से भरा पड़ा है। हमें गर्व है कि प्रकृति ने पलामू को अनुपम उपहार प्रदान किया है। पलामू के गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है, इसलिए पलामू के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिकता है। जिले की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अब वो आवास योजना, पीएम जनमन योजना, कृषि और संबद्ध कृषि के क्षेत्र में पशुपालन, गव्य और मत्स्य पालन आदि प्रक्षेत्रों में सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। समाज कल्याण की यदि बात करूं तो सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, विधवा पुनर्विवाह योजना, दिव्यांग जनों के लिए विशेष यंत्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। पलामू जिले में मैया समान योजना से 3,45,211 लाभुकों के खाते में 1,035,63,30,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जा रहा है। मैं 15 अगस्त के अवसर पर जिले के किसानों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर 2012 में अमानत बराज का निर्माण कराया गया था, लेकिन कतिपय कारणों से किसानों के खेतों में पानी कभी नहीं पहुँचा। ये योजना लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे अथक प्रयास से अमानत बराज योजना को पुनर्जीवित करते हुए 947 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस साल का स्वाधीनता दिवस बहुत ही खास, युवा शक्ति जागरूक हो रही है, वह अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक हो चुकी है। मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आपसे हम आशीर्वाद और स्नेह मांगते हैं कि इसी जज्बा के साथ पलामू के विकास के लिए हम काम कर सके। ये शक्ति आप हम सबको दीजिए, हमारी सरकार को दीजिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।
3: इस प्रकार राज्य के पलामू प्रमंडल में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अदम्य उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आकाशवाणी डाल्टनगंज से कार्यक्रम प्रमुख प्रशांत गौरव के साथ मैं संतोष कुमार।
2: इस प्रकार देश के प्रति पूर्ण आस्था, समर्पण एवं देश की उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी का संकल्प लिए 80वां स्वतंत्रता दिवस सामाजिक, शैक्षणिक, सरकारी, गैर सरकारी सहित विभिन्न संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।
5: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित मुख्य समारोह पर आधारित

जो रिपोर्ट अभी हम सुन रहे थे। प्रस्तुति स्वर था ओली मिंज का, संकलन दिनेश कुमार लाल का, तकनीकी सहयोग राजीव खलखो, प्रियंका और मोहम्मद असद का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रभु शरण और गौरव कुमार, संयोजन था जेवियर कंडोलना का। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।

0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्त धारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह

0: करगिल के क्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
4: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par aage badhta hai. Bade sapne हमारी सोच को विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने

0: सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है.
1: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
0: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai parmanu urja, nuclear energy. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं.
1: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
0: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया. और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है, हम प्रयास कर रहे हैं. हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है.
1: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
1: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On Naxalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from Naxalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूँ. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे. और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा.
1: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए. और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके.
1: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Our correspondent takes a glimpse at independence celebrations at the Red Fort today.
2: Independence Day celebrations today commemorated 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram. For the first time, Vande Mataram was rendered during the celebrations at Red Fort. Upon his arrival at the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi was received by Defence Minister Rajnath Singh, Minister of State for Defence Sanjay Seth, and Defence Secretary Rajesh Singh. The Guard of Honour contingent for the Prime Minister consisted of 1 officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force.

0: A correspondent reports that the garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands, and in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against host Sri Lanka. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम-ए-आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की कुव्वत को बरूए-कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम-ए-आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। हॉकी में नीदरलैंड्स में एफआईएच वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज 80वां यौम-ए-आज़ादी पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले पर यौम-ए-आज़ादी की तकरीबात में मुल्क की क़यादत की। वहां उनके पहुंचने के बाद लाल किले पर पहली मर्तबा कौमी गीत वंदे मातरम गाया गया। इस साल की तकरीबात में 2047 तक विकसित भारत की तामीर में नौजवानों के रोल को तस्लीम करते हुए युवा शक्ति की अहमियत उजागर की गई। लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन कोशिशों की बदौलत 25 करोड़ लोग गुरबत से बाहर आ गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्याफ्ता मुल्क बनने का बड़ा निशाना तय किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत, जो कभी 5 कमजोर मईशतों वाले मुल्कों में शामिल था, अब दुनिया में एक बड़ी और सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर उभरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब वो खुद अपने ख्वाब और अज़्म की ताकत के साथ कदम बढ़ाता है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि बड़े ख्वाबों और मजबूत अज़्म से मुल्क की कोशिशों की सलाहियत में इजाफा होता है।
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।

0: विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो देवदत्त पडिक्कल ने 131 रन बना लिए थे, जबकि ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे। इससे कबल यशस्वी जायसवाल ने 32 और कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आजादी का जश्न मनाने में मुल्क की क्यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वे एक मजबूत और खुद कफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वजीर आजम ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और खवातीन को बाख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की कुव्वत को बरूएकार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई की गई है। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

ये गीत था फिल्म राजनीति से, और इस गीत को गाया है विजय प्रकाश ने। और अब अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है फिल्म लव आजकल से। आवाजें दी हैं इसमें मास्टर सलीम और श्रीधर ने।

और ये गाना था फिल्म तुम्हारी सुलों से, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। और अब जो आप अगला गाना सुनेंगे वो है आधा इश्क, और इसे गाया है श्रेया घोषाल ने। फिल्म है बैंड बाजा और बारात।

और अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, आपसे फिर होगी मुलाकात 11:10 पर, कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश।

0: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में विभिन्न संस्थानों द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर ध्वजारोहण पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। बाह्य ध्वनि अंकन सुनीता हंसदा, ओबी रमेश कुमार दास और कमलेंदु महतो की है।
1: आज 15 अगस्त है। यह दिन भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों के अथक संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम सभी 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं।

चाईबासा में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित हुआ, जहां झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरवा ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। आइए सुनते हैं पुलिस लाइन से रमेश दास की रिपोर्ट।

प्यारे देशवासियों, यह दिन हम सबके लिए अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का दिन है। हम सब अपनी आज़ादी का 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्राधीनता से मुक्ति का त्यौहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग और बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृतियों को श्रद्धापूर्ण समन करता हूँ। हम भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिए गए बलिदान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। इस पावन अवसर पर मैं झारखंड आंदोलन के पुरोधा एवं राज्य की अस्मिता के प्रखर प्रहरी दिवंगत श्री शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

हूँ उनके लंबे संघर्ष और आदिवासी अधिकारों, जल जंगल जमीन की रक्षा के योगदान को हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में याद रखेगा तथा झारखंड आंदोलन के तमाम उन शहीदों को भी हम श्राद्ध सुमन अर्पित करते हैं जो राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। वर्तमान में हमारी सरकार देश एवं जिला के विकास कार्यों को गति देने के लिए कृत संकल्प है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत कुल 21,030 परिवारों के लिए 420,60,00,000 की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जिसमें से 1,141 आवासों को का निर्माण पूर्ण कर लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2024-25 कुल 18,938 परिवारों के लिए 227,25,60,000 की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जिसमें से 3,575 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। इस वित्तीय वर्ष में जिला अंतर्गत आवास निर्माण हेतु 116,00,000 रुपये का भुगतान लाभुकों को किया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTG के 24 परिवारों के लिए 48,00,000 एवं भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत 8 परिवारों के लिए 10,40,000 रुपये आवास निर्माण हेतु स्वीकृति की गई है, जिनमें से 20 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पश्चिमी सिंहभूम जिला ने विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिरसा हरित ग्राम योजनाओं के क्रियान्वयन में अपार सफलता पाई है। इस चालू वर्ष में सभी प्रखंडों के किसान भाइयों ने प्रखंड में लगाए गए आम स्टॉलों एवं अन्य माध्यमों से आम एवं अन्य फल उत्पादन की बिक्री कर 1,30,00,000 की शानदार आय अर्जित किया है। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत समिति मध्य एवं पंचायत मध्य में कुल 27,94,19,247 रुपये विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों तथा पंचायतों में आवश्यक व्यवस्था, सभी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में हैंडवाश यूनिट, दशमक पानी टैंकर, पेपर्स ब्लॉक, पंचायत भवनों का रंग रोगन शुद्धिकरण एवं अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। पंचायत ज्ञान केंद्र के अधिष्ठान प्रति ग्राम पंचायत 4,20,000 की दर से 23,52,00,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही पंचायत सचिवालय शुद्धिकरण योजना के तहत प्रति ग्राम पंचायत को 15,000 रुपये प्रति माह की दर से कुल 1,95,30,000 की राशि उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्लस के द्वारा जिले के सभी 18 प्रखंडों में कुल 16,217 सक्रिय एवं सहायता निबंधित हैं, स्वयं सहायता निबंधित हैं, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 353 सामूहिक समूहों को सामूहिक निवेश निधि CIF के रूप में कुल 2,83,00,000 रुपये की राशि एवं 4,000 समूह को बैंक क्रेडिट लिंकेज CCL के माध्यम से 29,49,28,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के राज्य को नशापान से मुक्त करने हेतु इस वर्ष जिले में कुल 418 लाभों को एक मुफ्त राशि देकर उन्हें विभिन्न रोजगार तथा सब्जी व फूल की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, शुकर पालन, किराना दुकान इत्यादि के माध्यमों से जोड़ा गया है। इस अभियान में जिले में अब तक कुल 3,340 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। जिले के सभी प्रखंडों में 19 दीदी कैफे, 75 बर्तन बैंक, कंटीजेंसी बचत, हाइजीनिक बचत, राखी संवाद, सखी संवाद, सत्र एवं निश्चय मित्र या TB मरीजों को गोद लेने की योजना इत्यादि कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत कुल 7,123 किसानों को 37,34,00,000 रुपये की राशि किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण दिया गया। मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत जिला में कुल 2,566 लाभों के बीच पशुधन वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु जिले में 1,72,749 महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह का आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सार्वजन पेंशन योजना के तहत 1,62,399 लाभों को विभिन्न योजनाओं का पेंशन

छात्रावास का निर्माण कर कुल 9,99,00,000 रुपये की राशि प्रकलित की गई। साथ ही जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत आधुनिक तकनीकी शिक्षा और रोजगार फलक कौशल से जोड़ने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर का कायाकल्प किया जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित करने हेतु कुल 76,35,00,000 एवं 73,000 की राशि से भवन निर्माण का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मझगांव प्रखंड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC भवन का निर्माण हेतु 11,00,00,000 राशि स्वीकृति दी गई। जल जीवन मिशन पूरे जिले में हर घर नल के द्वारा शुद्ध पेयजल मुहैया करा जाना, जिले के 11 प्रखंडों में 2,13,792 घरेलू नल कनेक्शन शुद्ध जल का संयोजन किया जा रहा है। शेष बचे घरों को शुद्ध जल से आच्छादन हेतु वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में कुल 488 ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS योजना के तहत 15,991 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 20 पथों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त निर्माण कार्य में 10,12,45,000 राशि का व्यय हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत 13 पैकेजों में 54 पथों का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जा रहा है। कुल लंबाई 212 किलोमीटर, जिसमें कुल 27,00,00,000 रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। पथ एवं पुल योजनाओं के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 5 पथों का निर्माण कार्य एवं 6 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें कुल 9,99,62,000 रुपये की राशि व्यय की गई है। जिला में अनुकंपा के आधार पर विभिन्न वर्गों में 75 आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। 26 उग्रवादी हिंसा में मृतक के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 26-27 में रोजगार मेला भर्ती कैंप के आयोजन के माध्यम से 76 स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है। इस बार कक्षा 1 से 12 तक के अध्ययनरत कुल 2,61,544 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम एवं कॉपी उपलब्ध कराया गया। साथ ही 1 से 8 तक के अध्ययनरत कुल 2,17,334 छात्र छात्राओं को निःशुल्क बैग उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक माह 5 तारीख को विद्यालय में खेल महोत्सव का आयोजन, बैगलेस डे, मूवी ऑफ द मंथ, साइंस एंड आर्ट्स क्राफ्ट एग्जीबिशन जैसे चंद्रयान मॉडल का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक माह 20 तारीख को विद्यालयों में विद्यार्थियों को सामूहिक जन्मोत्सव सह तिथि भोजन का आयोजन हो रहा है। इन कार्यक्रमों से विद्यालयों में 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओलंपियड 2026 के तहत कक्षा 10 के उत्कृष्ट 100 विद्यार्थियों को चयन कर उनके आवासीय विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जा रही। मलेरिया के रोकथाम, महामारी, बाल विवाह, बाल तस्करी एवं संबंधित जागरूकता हेतु विद्यालयों में अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 291 लाभों को 28,64,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए सरना, मशना, हगड़ी, जहरतान की पक्की घेराबंदी हेतु 57 योजनाओं में 1,74,63,907 रुपये की राशि भुगतान किया गया। परंपरागत वन निवासी है 7,035 व्यक्तिगत दिव्यांग 246 सामुदायिक सहित कुल 7,281 वन पट्टों का वितरण किया गया। 29 का पहिया साइकिल वितरण योजना के तहत कुल 16,788 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया। हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है। कुपोषण में पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसी वर्ष 355 बच्चों को कुपोषण उपचार कार्यक्रम अंतर्गत उपचार किया गया। इस संजीवनी कार्यक्रम में हमारा जिला जुलाई 2026 में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। PMSMA कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिला माह जुलाई 26 में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में जिले की उत्कृष्ट उपलब्धि को दर्शाता है। ब्लड बैंक को सदर अस्पताल में 18 वर्षों बाद लाइसेंस प्राप्त हुआ, जो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिले में रक्त की उपलब्धता हेतु रक्त कोष बनाकर 2,858 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में कुल 289 बच्चों का इलाज किया गया। राष्ट्रीय प्रतिरक्ष कार्यक्रम अंतर्गत 484 गर्भवती माताओं को सी सेक्शन के माध्यम से प्रसव कराया गया। साथ ही 0 से 1 वर्ष आयु के 13,939 बच्चों को पूर्ण टीकाकरण किया गया। मलेरिया नियंत्रण

0: कार्यक्रम के अंतर्गत 2,75,550 स्लाइड कलेक्शन किए गए। साथ ही 700 से अधिक टीबी मरीजों को सबके सहयोग से गोद लेकर प्रतिमा पोषण बास्केट उपलब्ध कराया गया। यशमा नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 1,682 टीबी मरीजों को चिन्हित कर उनका उपचार किया गया। स्वास्थ्य और संरचना के क्षेत्र में सदर अस्पताल चाईबासा को नए भवन हस्तांतरित किया गया, जिसमें जिले वासियों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। हमारी सरकार खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दे रही है। आर्चरी तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण एवं 1 कांस्य के साथ कुल 3 पदक प्राप्त किए। राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण 7 रजत एवं 10 कांस्य के साथ कुल 24 पदक अर्जित किए, जिसमें बैंकॉक में आयोजित पैरा इंटरनेशनल 2026 में विजय सुंडी के द्वारा 2 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक प्रमुख रहा। इसी प्रकार बॉक्सिंग में जिला के खिलाड़ियों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1-1 कांस्य पदक प्राप्त किए, जिसमें कनिष्का कुमारी गोराई के द्वारा एशियन बॉक्सिंग में 1 कांस्य पदक प्रमुख रहा। इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण 2 रजत 8 कांस्य, साइकिलिंग में 1 स्वर्ण जो लासन में 1 रजत के साथ पैसणों सुब्रतों का फुटबॉल टूर्नामेंट में पश्चिमी सिंहभूम रन्नार अप रहा। अपराध नियंत्रण 2026 में जनवरी से जुलाई तक कुल 707 कांड प्रतियोगिता हुई है, जिसमें 358 अपराधियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ऑपरेशन सरांडा, ऑपरेशन मेघातुंगु के दौरान 1 करोड़ का इनामी बनल समेत 17 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में गांव में भरोसा जंगल में अभियान के तहत किरीबुरु वेलकेरा सोनुआ आदि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए गए एवं ग्रामीणों को IED एवं संदिग्ध वस्तुओं से सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया। 2025 के बाद 29 नक्सली गिरफ्तार किए गए, 18 नक्सली मारे गए, 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान 2 सुरक्षा बल एवं 4 ग्रामीणों की मृत्यु भी इसी अभियान के क्रम में हुई। लगभग 200 वर्षों की गुलामी सहने एवं देशवासियों के जीवन कुर्बान किए जाने के बाद हमें यह अनमोल आज़ादी प्राप्त हुई। आज हम आज़ादी के 79वें वर्ष पूर्ण कर 80वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने अपनी मजबूती और लचीली क्षमता का परिचय देते हुए भारत की वास्तविक GDP दर 7.7% रही, जिसे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा। मैं झारखंड सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सरंडा तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में धरातल पर उतारने में जनप्रतिनिधियों को उनके सजग एवं सतर्क भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।
1: कला नगरी सरायकेला परिक्षेत्र में भी कई जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। विवरण दे रहे हैं कमलेंदु महतो।
2: मिट्टी की खुशबू कहती है, भारत मेरी पहचान है, तिरंगा मेरी शान है, हिंदुस्तान मेरा अभिमान है। सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिले के आसपास विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आइए सुनते हैं मिली जुली प्रतिक्रियाएं। कला नगरी सरायकेला परिक्षेत्र से सम्मानित शिक्षक तरुण कुमार सिंह जी संदेश के रूप में कहते हैं,
3: देश के बलिदानियों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा, जिस मिट्टी में जन्म लेना हमारा सौभाग्य है, उस भारत देश की मिट्टी को नमन है। संपूर्ण देशवासी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने का भी नाम है। आइए आज हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, युवा पीढ़ी के प्रतिभा का ईमानदारी से सम्मान करें, उन्हें अवसर प्रदान करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, संपूर्ण देश को साक्षर बनाने में आगे आएं, स्वच्छता बनाए रखने में आगे आएं, भ्रष्टाचार उन्मूलन और एक मजबूत राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक

0: जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।
1: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाई के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुजीत कुमार मुर्मू जी देशवासियों को बधाई के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं।
2: जोहार, मैं डॉक्टर सुजीत कुमार मुर्मू, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाई की ओर से सभी भारतवासियों को एवं झारखंड वासियों को, सरायकेला वासियों को एवं कुचाई प्रखंड के जितने भी हमारे भाई बहने हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हम सब इस वर्ष प्रण लेते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित हमारे भारत में, हमारे प्रखंड में और हमारे राज्य में जितनी भी तकलीफें होंगे, एज अ चिकित्सक हमें उनके लिए हमेशा सदैव खड़ा रहना होगा, हमेशा मदद और उस भावना से हमें उन्हें से संबंधित सभी सुविधा प्राप्त करवानी होगी। जब तक हम लोग मरीजों को अपने भाई बहन, अपने घर वालों के जैसे अगर नहीं सोचेंगे तो उस लेवल पे हमें उन्हें चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। हम ये प्रण लेते हैं कि इस 80th इंडिपेंडेंस डे पे हम सब मिल के, आप हम सब जितने भी हमारे अधिकारी हैं, स्वास्थ्य संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, सबको इस कार्य के लिए आगे हाथ बढ़ाना है और कोशिश करेंगे कि सभी को स्वस्थ करने के लिए हमारे भारतवासियों को और जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम है, हमारे द्वारा आप सभी को उपचार करने के लिए मैं अग्रणी रहूँगा। धन्यवाद। जोहार। खाने
1: बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुचाई से चंचला बांकिरा का कहना है।
3: समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। हम देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प।
1: इस अवसर पर सभी प्रखंड वासियों को, देशवासियों को बधाई संदेश देते हुए कुचाई प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री साधुचरण देवगम जी के साथ,
4: सबसे पहले मैं आकाशवाणी के माध्यम से कुचाई प्रखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है और इस स्वतंत्रता की प्राप्ति में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और जिन लोगों ने हमें ये आज़ाद मुल्क मुहैया कराया, सबसे पहले मैं उन सभी के प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि उनकी संघर्षों के बदौलत, उनके बलिदानों के बदौलत आज हम लोग आज़ाद मुल्क के आज़ाद फिजाओं में श्वास ले पा रहे हैं। और निश्चित रूप से जिन लोगों के सामने एक लक्ष्य था कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वतंत्र देश उपलब्ध कराएंगे, तो उन लोगों का सपना साकार हो गया है। उनके सामने अपनी चुनौतियां थी लेकिन वर्तमान में चुनौतियां बदल गई हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, उनके शोषण के शिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में चुनौतियों का स्वरूप बदल गया है। तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो सपना देखा था वो सपना कहीं ना कहीं अभी भी अपूर्ण अवस्था में है और हम सबकी ये महती जिम्मेवारी है कि राष्ट्र निर्माताओं ने जो सपने देखे थे उनके अधूरे स्वप्नों को हम लोग पूर्ण करें और यह कार्य हम लोग अपने अपने दायित्वों का उचित निर्वहन करते हुए भलीभांति कर सकते हैं। जैसे जो किसान है वो अपना खेती किसानी के माध्यम से देश की सेवा करता है, हमारा अन्नदाता है, उसी तरह से श्रमिक वर्ग के हमारे भाई बंधु अपना श्रम करके हमारे देश की उन्नति में तरक्की करते हैं। वैसे ही जैसे हम जैसे सरकारी कर्मी हैं उनका भी ये दायित्व है कि जो सरकार के द्वारा कार्य आवंटित किए गए हैं जनकल्याण के लिए, उन कार्यों को हम लोग लक्षित समूह तक पहुंचाएं। इसी तरह से हर व्यक्ति अगर अपने अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करे तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं के जो अधूरे स्वप्न हैं उन स्वप्नों को हम लोग बिल्कुल साकार कर सकते हैं। मैं प्रखंड वासियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति

0: उनका जो भी दायित्व है अपने दायित्वों का उचित रीति से निर्वहन करें, यही हमारी श्रद्धांजलि होगी हमारे राष्ट्र निर्माण।
1: सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से सम्मानित शिक्षक सुधाकर ठाकुर जी का कहना है।
2: आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं अपने समस्त विद्यालय परिवार प्रबंधन समिति के साथ साथ समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इतनी बात तो हम हर वर्ष अपने देश के नागरिकों, भावी भारत के युवाओं एवं अन्य बच्चों को बताते आ रहे हैं। यह भी बताते आ रहे हैं कि हमारा देश सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान स्वरूप आज़ाद हुआ है। सन 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, यह केवल राजनीतिक आज़ादी मिली थी, परंतु हमारे आज़ादी के वीर सपूतों, क्रांतिकारियों, बलिदानियों, शहीदों का सपना केवल राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी। उनका सपना भारत को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रूप से आज़ाद करने को था कि पूरा विश्व हमारी सैन्य क्षमता एवं पराक्रम का लोहा मान रहा है। भारत बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है। देश के संसाधनों को देश के अंतिम नागरिक तक पहुंचाने का सपना आज फलीभूत हो रहा है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग के माध्यम से अगर देश इसी प्रकार विकास करता रहे तो हम आशा करते हैं विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लोग धार्मिक, बौद्धिक, शैक्षिक रूप से इस देश से के साथ जुड़ रहे हैं। आकाशवाणी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी देश को हम पूर्ण रूप से आज़ाद तब मान सकते हैं जब वह सांस्कृतिक रूप से आज़ाद हो। हमारा देश अब धीरे धीरे सांस्कृतिक रूप से आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। हम अपने देश के युवाओं, बच्चों, नागरिकों, नेताओं एवं समस्त भारतवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर अपील करते हैं एवं संकल्प लेने के लिए आह्वान करते हैं कि वे भारत की सांस्कृतिक आज़ादी के लिए आगे आएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, स्वतंत्र भारत के इस अमृत काल का साक्षी बने, ताकि समय से पूर्व हमारा भारत विश्व गुरु बन सके एवं अपने पूर्व गौरव को प्राप्त कर सके। को बधाई देता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ एवं घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: सरायकला खरसवां कुचाई से संकलन के साथ आकाशवाणी चाईबासा के लिए मैं कमलेंदु कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे 80वां स्वतंत्रता दिवस पर विशेष रिपोर्ट, प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार पीहू, प्रस्तुति स्वर सुनीता हांसदा, संकलन सह संपादन में रमेश दास और कमलेंदु महतो।
1: आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में विभिन्न संस्थानों द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर ध्वजारोहण पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों के रंग।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म हमराज से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर।

क्षमा करेंगे, तकनीकी कारणों से ये गाना हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। अगला गीत है फिल्म बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म से गायक कलाकार है महेंद्र कपूर।

अभी आपने सुना फिल्म रात अकेली है। इस फिल्म का गाना आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी की। और आइए सुनते हैं फिल्म आदमी सड़क का, गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी।

होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त

कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।